सुप्रभात। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 31 तारीख, तदनुसार 21 जून वर्ष 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 39 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ ही क्षणों में प्रातः के 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22

0: 79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज का चिंतन वंदन वार। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

आज का चिंतन। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मन की चंचल वृत्तियों को पूरी तरह शांत और नियंत्रित करना ही योग है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत। सबसे पहले विविध भारती मुंबई से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का पाठ, 6:45 पर संगीत सरिता में श्रृंखला वायलन का विहंगम संसार में सुनिएगा वायलन वादक पंडित SL कंडारा भाग 4 और 7 भूले बिसरे गीत। हमें राही प्यार के युगल गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार प्रसारित किए जाएंगे 8 समाचार प्रभात, 10 का समय रहेगा हिंदी समाचार का और 12 हिंदी समाचार फिर से प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे 1:05 पर हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। सायंकालीन प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर हिंदी में आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से और 6:20 पर पंजाबी समाचार विविध भारती के जालंधर केंद्र से रिले किए जाएंगे। दोपहर समाचारों में 2:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे और रात्रि हिंदी समाचार सुनिएगा 8:45 पर और रात 11:00। विविध भारती मुंबई से त्रिवेणी सुनेगा प्रातः 8:15 पर और चित्रलोक का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 8:30 और रात्रि 8:15।

हमारे केंद्र से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय समाचार आप सुनेंगे। कार्यक्रम आज का अखबार के अंतर्गत समय रहेगा 9:30।

लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ का समय रहेगा सुबह 10:05। आज का विषय है इंटरनेशनल योगा डे पर आधारित अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनाएं योग, हर उम्र में रहें निरोग। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के अंतर्गत जानी मानी गायिका जसपिंदर नरूला के गायकी सफर की कहानी जिंदगी नामा सुनेगा प्रातः 11 बजे विविध भारती चंडीगढ़ से। साढ़े 11 बजे सुनेगा अपनी पसंद के गीत कार्यक्रम हेलो सिटी ब्यूटीफुल में। विविध भारती मुंबई से 12:05 पर सुनेगा कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1:30 पर सुरीला सफर, 2 बजे त्रिवेणी, 2:30 पर गोल्डन हिट्स सदाबहार नगमे। मनचाहे गीत ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 3 बजे। 3:30 पर नाट्य तरंग में नाटक मृत्युहीन प्राण भाग 2 और शाम 4 बजे सुनेगा उजाले उनकी यादों के, रीमा अमरापुकर से यूनुस खान की बातचीत भाग 1।

शाम 7 बजे आप सुनेगा जयमाला महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालूखे प्रस्तुत करेंगे ये कार्यक्रम। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा झलकी मोटी मछली। रात 9:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज आधारित है अभिनेता टॉम ऑल्टर पर। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई से श्री रामचरित मानस।

चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का 14 वर्षों के वनवास का प्रसंग भी कम शोकपूर्ण नहीं था। किंतु महारानी कौशल्या ने जो कुछ भी हो चुका था उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया था। उनका ये विश्वास भी दृढ़ हो गया था कि श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनगमन सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। उन्हें चिंता थी तो भरत की, जो कुल दीपक थे और जिनके शील, नम्रता, भ्रातृप्रेम, भक्ति आदि की प्रशंसा करने में सरस्वती की बुद्धि भी जैसे सक्षम नहीं थी।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। पंडित जी फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे संगीतकार प्यारेलाल जी के बारे में। उनके द्वारा बजाया गया वॉयलिन कुछ गीतों में बड़ा मुखर रूप में हमें सुनने को मिलता है।
2: बिल्कुल,
1: तो इसके बारे में और क्या आप बताना चाहेंगे हमें?
2: देखिए, प्यारेलाल जी का एक पूरा स्कूल था फिल्म इंडस्ट्री में।
1: जी जी।
2: और उनको जितने वायलिन प्लेयर थे फिल्म इंडस्ट्री के वो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। उनके पिताजी राम प्रसाद जी तो फिल्म के स्कूल में उनका बड़ा दर्जा था एज ए गुरु। फिल्मों में जो वायलिन सिखाने वाले खास लोग थे उनमें रामप्रसाद जी का भी बड़ा योगदान है।
1: जी, जी।
2: और प्यारेलाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे और उन्होंने कई सारी फिल्मों में व्यक्तिगत सोलो पीसेस दिए वायलिन के, बहुत सुंदर। मुझे उनके बारे में ज़्यादा कहने का अधिकार कम है इसलिए क्योंकि मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो एज ए वॉयलिनिस्ट फिल्मों में काफ़ी पॉपुलर थे
1: जी,
2: प्यारेलाल जी। और शुरू में जब ये बड़े म्यूजिक डायरेक्टर लोग थे, मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, रोशन साहब,
1: हाँ,
2: जयदेव साहब, उस वक्त उन्होंने कुछ सोलो पीसेस बजाए हैं फिल्मों में। और वो उनमें से मदन मोहन जी का एक गीत है जो हकीकत फिल्म का गीत है
1: जी,
2: तो वो गीत आप श्रोताओं को सुनवा सकते हैं। मदन मोहन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में प्यारेलाल जी ने जो सोलो पीस बजाया उसमें,
1: मैं ये सोच के उसके दर से।
2: एग्जैक्टली वही गीत।

0: हकीकत फिल्म का गीत अपने श्रोताओं को पंडित जी हमने अभी सुनवाया, रफी साहब का गाया हुआ, जिसमें प्यारे लाल जी द्वारा बजाया सोलो पीस हमने सुना। और इसी की बात हो रही थी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी फिल्मों की ओर रुख करने का मन हुआ होगा आपका?
1: जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट 1975 में मैं पूना में था, नौकरी करता था
0: जी,
1: और तबादला करा के मैं केंद्रीय विद्यालय में बम्बई में आया। उस ज़माने में मेरा एजेंडा में एक बात थी कि क्लासिकल म्यूज़िक मुझे सीखना चाहिए, और पंडित रामनारायण जी अकेले वो व्यक्ति थे जिनके साथ मैं मिल के उनसे सीखना चाहता था। लेकिन यूथ जो होता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है। मैं भी जवान था उस वक्त, तो मेरा कभी कभी फिल्मों की तरफ भी अट्रैक्शन होता था, कभी क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ।
0: हाँ।
1: उसी उधेड़बुन में एक दिन मैं जयदेव साहब के यहाँ जा पहुँचा, और जयदेव जी रहते थे हीरोज टाकीज जो बम्बई में है उसके पीछे लिली कोर्ट में।
0: हाँ हाँ।
1: मेरे एक मित्र प्रदीप बारोट और मैं दोनों गए। प्रदीप बारोट सरोद बजाते हैं, तो उनके साथ मैं गया और जयदेव जी को मैंने देखा एक कमरे में चटाई बिछाए हुए। आज के म्यूज़िक डायरेक्टरों से उनकी तुलना नहीं कर सकते आप, वो इतने बड़े लोग थे, महान बड़े जो वास्तव में कहे जाने चाहिए
0: जी।
1: एक चटाई बिछा रखी, तकिया लगा के थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, और पास में हारमोनियम पड़ा हुआ, तो हम गए मिलने, हमें तो दर्शन करने थे। उन्होंने मुझे सलाह दी और मेरे गुरुजी पंडित रामनारायण ने सलाह दी कि फिल्मों में अगर जाओ तो मेरे पास मत सीखना।
0: हो
1: इवन जयदेव जी ने भी

0: यही कहा कि फिल्मों में जाओगे तो फिल्मी हो जाओगे। और ये देखिए बड़प्पन बड़े लोगों का, जयदेव जी, गुरुजी, नौशाद साहब या रोशन साहब, ये सब फिल्मों में रहे लेकिन फिल्मी नहीं हुए। और यहाँ एक बात मैं बहुत आदर के साथ श्रोताओं को और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी ने फिल्मों में असंख्य पीसेस बजाए और एक से एक उम्दा, जिनका जिक्र अगले एपिसोड में करेंगे
1: जी।
0: तो जयदेव जी ने मुझे कहा कि फिल्मों में बजाओगे तो फिल्मी हो के रह जाओगे। जयदेव जी इतने महान संगीतज्ञ थे कि उन्होंने जिस फिल्म में भी गीत बनाए हैं वो गीत महान हुए। एक गीत उनका सुना दीजिए, तू चंदा में चांदनी, रेशमा और शेरा फिल्म का। ये मेरी तरफ से उनको आदर होगा।
1: जयदेव साहब की बात निकली है तो उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं
0: जी। अवश्य।

0: महान संगीतकार जयदेव की ये संगीत रचना फिल्म रेशमा और शेरा से अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई, लता जी की आवाज, बाल कवि बैरागी की रचना, और इस रचना के साथ ही वॉयलिन का विहंगम संसार इस श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न हो रही है। नमस्कार।
1: वॉयलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।

0: आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: दीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। सुनते हैं प्रोग्राम का पहला गाना।

0: नागरानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुमन कल्याणपुर और सखियों की आवाजों में रचना प्रेम धवन की थी, संगीतकार एसएन त्रिपाठी। लीजिए अब सुनिए जिंदगी फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज में, शब्दकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: तू हंसता है, हंस मेरे यार हंस, भगवान करे तू हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे।

0: जिंदगी फिल्म का गीत मनाडे के स्वर में अभी आप सुन रहे थे बोल। शैलेंद्र ने लिखे थे, धुन शंकर जयकिशन ने बनाई थी। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी।
5: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, मुस्कुरा लाडले। एक पिता की ओर से अपने संतान के मुस्कुराते रहने की ये आशीष है इस गाने में। ये गाना आप सुन रहे थे मुसाफिर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ है, शब्दकार शैलेंद्र थे और सलिल चौधरी ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में समय आप सुन रहे हैं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवा में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पार्श्व गायिका डॉक्टर जसविंदर नरूला के गायकी सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।
1: आप जब नमाज करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो दिल से ही होता है, तो ये मेरी नमाज है, संगीत मेरा पाठ है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे यही कर्म के लिए भेजा है।
0: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।

0: सचमुच जीना इसी का नाम है जब किसी का दर्द बांट लिया जाए और किसी के होठों पर खुशी खिला दी जाए। अनारी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, इस संदेश के पहले आप जो गाना सुन रहे थे उसे हमने अनारी फिल्म से लिया था। मुकेश की आवाज़ थी, शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी और एक और संदेश आई, सुनते हैं।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ any GI problem is education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आवारा फिल्म का गीत। आवाजें हैं मुकेश की और लता मंगेशकर की, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत। संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

हम ही राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का

शुरुआत हलाकू फिल्म के इस गीत से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत सुन रहे हैं।

दिल का ना करना एतवार को ही हलाकू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की थी, बोल शैलेंद्र ने लिखे थे, धुन शंकर जयकिशन ने बनाई थी। अब सुनते हैं खाप फिल्म का गीत हेमलता जसपाल सिंह की आवाजों में और सुरेश वाडकर की आवाजों में। ये गीत सुनिए, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन है।

0: के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लिया जाए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर

0: सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में इंदिवर की ये रचना अभी आपने सुनी। श्यामल मित्रा ने इस रचना की धुन बनाई थी।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ।

0: कुछ नहीं।
1: काला पत्थर फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। शब्दकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे राजेश रोशन। छैला बाबू फिल्म का गीत आप आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर मुकेश की आवाज से।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में छैला बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाज़त सविता सिंह को। नमस्कार।
1: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। कुछ ही पलों में सुबह के 8 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात

0: में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी

0: सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
4: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12,00,000 करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद।

0: मोहम्मद रवि और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई से अगला कार्यक्रम त्रिवेणी।

योग भारत की प्राचीन संस्कृति की एक अनमोल देन, जिसे भारत ने नहीं आज पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। इसे कई सारे नए नए नाम दे दिए गए हैं और उन नए नामों के साथ भी योग अखिल विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। योग को कई लोग योगा भी कह देते हैं, परंतु योग तो योग है जो संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ना किसे? हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को और हमारे प्रत्येक अंग को अपने आप से एक दूसरे से जोड़ देना, यही युज है। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो युज का अर्थ होता है जोड़ना। आपको आपके अध्यात्म से जोड़ देना ही योग है, और योग मनुष्य की प्रकृति और आत्मा को एक साथ जोड़ देता है। भाग दौड़ भरा जीवन है और इस जीवन में योग का महत्व अद्भुत है। योग के सूत्रों को मुख्य रूप से योग सूत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। इस योग सूत्र में 195 सूत्र हैं, जिनमें योग के नियम, साधना, ध्यान और जीवन में संतुलित बनाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें अष्टांग योग का वर्णन भी मिलता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं।

योग का इतिहास सहस्त्रों वर्ष पुराना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, भागवत गीता में योग का उल्लेख मिलता है। पहले योग का उपयोग ऋषि मुनि मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करते थे। धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रचार हुआ और आजकल लोग योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। योग करने के अनेकों लाभ हैं। इससे शरीर स्वस्थ हो जाता है और लचीला बन जाता है। नियमित योग करने से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। योग रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी कई सारी समस्याओं को नियंत्रित करने में भी योग मदद करता है। योग से कई सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। अब योग से हम किन किन बीमारियों से या किन किन समस्याओं से बच सकते हैं या उनमें लाभ मिलता है, उनमें से कुछ अगर कही जाएं तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, तनाव, चिंता, अनिद्रा, पीठ दर्द, गठिया, अस्थमा, पाचन संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से योग हमें बचा लेता है।

योग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मन को शांत करता है और शरीर को लचीला बनाता है। आज के काल में सभी मानसिक परेशानियों से भी उलझे हुए हैं। हर रोज एक नई समस्या समक्ष आन खड़ी होती है और अगर हम योग की साधना करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त अपने आप शांत हो जाता है और कई सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, जिससे हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट यानी हम अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं और बहुत सरलता से कई बड़ी बड़ी परेशानियां

परेशानियों को निपटा सकते हैं। हालांकि कई सारी बड़ी बड़ी गंभीर रोगों के लिए कहा जाता है कि केवल योग पर निर्भर ना करें, परंतु डॉक्टर की सलाह, उचित इलाज के साथ अगर योग किया जाए तो लाभ अधिक मिलता है। विद्यार्थियों के लिए तो योग अति आवश्यक है, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग हमें स्वस्थ, अनुशासित, सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, इसलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो कौन कौन करेगा योग, आज से विचार कीजिए, योग में जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपकी धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन के प्रत्येक क्षण को बहुत सरलता से जीने की राह देता है। योग रोग निरोध करता है।

0: HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
6: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
5: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
6: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
5: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
6: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है चित्रलोक कार्यक्रम, प्रस्तुत होगा थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पार्श्व गायिका डॉक्टर जसविंदर नरूला के गायकी सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।
1: आप जब नमाज करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो दिल से ही होता है, तो ये मेरी नमाज है, संगीत मेरा पाठ है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे यही कर्म के लिए भेजा है।
0: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार, सविता सिंह का। आज योग दिवस मनाया जा रहा है, आप सभी को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। योग जीवन जीने की कला सिखाता है, ताल से ताल मिलाकर योग करना हमारे जीवन के लिए, हमारे सांसों के लिए, हमारी आध्यात्मिक चेतना के लिए बहुत आवश्यक है।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। ए आर रहमान का संगीत निर्देशन था, ताल फिल्म का नाम था, आपने सुना ये गाना।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन? कौन
3: लाया? अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूँ मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, exercise, and when do you get self-tested?

0: नर्स या डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना, तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: लहमर हुसैन पुरी और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आप राजशेखर का लिखा हुआ सुन रहे थे। संगीतकार थे कृष्णा और फिल्म का नाम था तनु वेट्स मनु। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में आप के गाने आप फिर सुन सकेंगे इस अंतराल के बाद।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे। अमाल मलिक और प्रीतम ने इस गीत को लिखा था। अमाल मलिक ने इस गीत और प्रीतम ने इस गीत के मिलकर धुन बनाई थी।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक समय तक रहता है। भारतीय परंपरा में इसे आध्यात्मिक दृष्टि से आज का दिन विशेष महत्व का दिन माना जाता है। भारत की प्राचीन धरोहर और अमूल्य धरोहर के रूप में योग पूरे विश्व को स्वास्थ्य और कल्याण का मार्ग दिखा रहा है। और आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है। भगवान शिव को प्रथम योगी माना जाता है। योग परंपरागत विस्तार होते हुए बाद में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना करके योग के सिद्धांतों को

व्यवस्थित रूप प्रदान किया और उन्हें योग के जनक के रूप में सम्मान दिया जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा अर्थात योग मन के चंचल वृत्तियों को शांत करने का साधन है। योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की अधिक ऊर्जावान बनाया जा सकता है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव, चिंता और अवसाद घेरे हुए है, उसे कम करने में सहायता मिलती है। मन शांत रहता है, योग से स्मरण शक्ति और कार्य करने की क्षमता में सुधार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अच्छी नींद आती है। सबसे महत्वपूर्ण, योग हमें अपने आप से, हमें खुद से मिलाता है। योग जोड़ता है, हमारे तन, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग है, बढ़ती आयु को रोकने के लिए योग। इस थीम का उद्देश्य ये संदेश देना कि योग केवल युवाओं के लिए नहीं बल्कि हर आयु के लोगों के लिए है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चलिए संकल्प लेते हैं अपने स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करेंगे। इस संकल्प को नियम पूर्वक पालन करें और इसी के साथ आप सभी को फिर से शुभकामनाएं।

0: जेम्स फिल्म का गीत सोनू निगम, श्वेता पंडित की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार थे नितिन रायकवार।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर

0: गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है?
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गीत इस ब्रेक के बाद।
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पार्श्व गायिका डॉक्टर जसविंदर नरूला के गायकी सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज दिन में 11 बजे
5: आप जब नमाज करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो दिल से ही होता है, तो ये मेरी नमाज है, संगीत मेरा पाठ है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे यही कर्म के लिए भेजा है।
4: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।

माधुरी दीक्षित ने और अनुपमा राग की आवाजों में गुलाब गैंग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं।

उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और आनंद मिलिंद ने इस गीत की धुन बनाई थी। आज फादर्स डे है, पिता दिवस। हमारी संस्कृति में पिता को देवता के समान माना गया है। पिता का स्नेह, पिता का अनुशासन और प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, पूरी राह दिखाता है। पिता के स्नेह और मार्गदर्शन से ही हम

हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। यूं तो हर दिन हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ और श्रद्धा समर्पण का भाव होना चाहिए, और यदि कोई विशेष अवसर आए तो उस अवसर को हमें कभी नहीं चूकना चाहिए। इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। और विश्व फादर्स डे हमें अपने पिता के प्रति सम्मान, श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करने का ये सुंदर अवसर प्रदान करता है। आइए हम उन सभी पिता को नमन करते हैं जो अपने परिवार की खुशियों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। यही पिता का स्नेह, यही पिता का प्यार हमारे जीवन को संवारता है, सजाता है, आगे बढ़ाता है।

में प्रेम की दीवानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, करीना कपूर और साथियों की आवाजों में। देव कोहली ने इस गीत को लिखा था, अनु मलिक ने इस गीत की धुन बनाई थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: दी राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक के कार्यक्रम के बाकी गीत इस ब्रेक के बाद।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग घूमे आधार जैसा ना कोई,
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ Sector 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। राम संपत का संगीत था, लापता लेडीज फिल्म का ये गाना आपने सुना।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लीजिए अब सुनिए धुरंधर फिल्म का ये गीत।

0: जैस्मिन सैंडल्स और सतिंदर सतराज की आवाजों में आप धुरंधर फिल्म का गीत सुन रहे थे।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे

0: आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रेया घोषाल की आवाज में ये तूतक तूतक तूतिया फिल्म का गाना है। प्रणव वात्स का ये गीत लिखा है इन्होंने और विशाल मिश्रा का संगीत है।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाज़त सविता सिंह को। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और आप सुखी, समृद्ध, ऊर्जावान रहें। इसी के साथ ही एक बार फिर से इजाज़त, नमस्कार।

0: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला

0: यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पार्श्व गायिका डॉक्टर जसविंदर नरूला के गायकी सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।
1: आप जब नमाज करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो दिल से ही होता है, तो ये मेरी नमाज है, संगीत मेरा पाठ है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे यही कर्म के लिए भेजा है।
0: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
3: आज का अखबार।
2: नमस्कार दोस्तों, आपकी रेडियो संगिनी बबीता कपूर लेकर हाजिर है आज का अखबार। शुभ रविवार और आप सभी का सेहत और तंदुरुस्ती भरा हो संसार, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम मना रहे हैं 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। ये दिन समर्पित है योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। स्वस्थ आयु के लिए योग, ये है वर्ष 2026 का थीम। वर्ष का सबसे लंबा दिन, ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक ये 21 जून का दिन। 2015 में हुए इस दिन को मनाने की शुरुआत और आज भारत ही नहीं विश्व भर में योग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और योग बन गया है हमारी दिनचर्या का अटूट और जरूरी हिस्सा। ये तो हुई योग की बात, योगा की बात। दोस्तों, संगीत भी तो एक तरह का योग ही है ना, और आज हम वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मना रहे हैं और संयोग देखिए कि फादर्स डे भी है आज। हर कुल मिलाकर बहुत बड़ा दिन, योग, संगीत और पिता के सम्मान का दिन। तो चलिए दिन को प्यार, प्राणायाम, ध्यान और संगीत की धुन से बनाते हैं और भी सुंदर और भी बेहतर।
4: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।

कार्यक्रम आज का अखबार आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से। कार्यक्रम में अब समय है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों के साथ कुछ खेल समाचारों का। दुनिया भर में मनाया जा रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्य कार्यक्रम आज कोलकाता में रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे योगाभ्यास का नेतृत्व। राष्ट्रपति मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में होंगी मुख्य अतिथि। सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा योगाभ्यास। नीट यूजी 2026 प्रवेश के लिए एनटीए आज लेगा दोबारा परीक्षा। 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार हो रहे शामिल। भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही परीक्षा। पीएम मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों का करेंगे अनावरण। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज भारत मंडपम में करेगा विशेष योग कार्यक्रम आयोजित। तमिलनाडु पुडुचेरी सीमा पर बसे शहर ऑरोविल में रह रहे 60 देशों के नागरिक आज करेंगे एक साथ योग। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू। पहला जत्था सिक्किम के नाथुला दर्रा से चीन में हुआ दाखिल। राम मंदिर चढ़ावा मामला। 60 किलो चांदी की शिलाएं अब भी पहेली। एसआईटी जांच पूरी। कल पेश हो सकती है रिपोर्ट। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य किया पार। अमेरिका और ईरान डील पर पैदा हुआ संकट। लेबनान में हमले जारी। इजराइल बेकाबू। 32 की मौत। ईरान ने हॉर्मुज को फिर किया बंद। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खुला दुनिया का पहला एआई आर्ट म्यूजियम डेटा लैंड। सामान्य टिकट की कीमत $49 से $79। बांग्लादेश में 81 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन। गायक अभिनेता दिलजीत दोसांझ के ग्लोबल

असर के लिए उन्हें मिला सम्मान। लॉस एंजलिस में 6 जनवरी दिलजीत दोसांझ डे घोषित। खेल समाचारों में वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज के लिए ब्लाइंड कैटेगरी में भारत के नंबर 1 तीरंदाज युगल गर्ग का चयन। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका से। ये तो थे कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और खेल समाचार। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: जल्द जारी होगा एग्जाम शेड्यूल। हिमाचल एंट्री टैक्स विवाद, रोपड़ में आज से शुरू होने वाला खालसा टैक्स स्थगित। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर आज पाकिस्तान जाएगा 290 श्रद्धालुओं का जत्था, 30 जून को होगी वापसी। सीएम भगवंत मान ने किया विकसित भारत शिक्षा अधिनियम विधेयक 2025 का विरोध, कहा इससे होगी पढ़ाई महंगी, विधेयक पर पुनर्विचार की अपील। हरियाणा को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल संरक्षित परियोजना स्वीकृत, विश्व बैंक ने 5,714 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। हरियाणा में हुए हर विधानसभा चुनाव का पूरा रिकॉर्ड प्रकाशित, चौपाल से चंडीगढ़ पुस्तक का हुआ विमोचन, हरियाणा के 75 वर्षों के राजनीतिक सफर की पूरी जानकारी देगी ये किताब। गुरुग्राम में बनेगा आवासीय एआई गुरुकुल, पहले बैच में 1.80 लाख सालाना आय वाले परिवार के युवा ले सकेंगे दाखिला, साल भर में हो सकेगी प्लेसमेंट। हरियाणा में जनगणना 2027 की तैयारी हुई तेज, मोबाइल ऐप से जुटाया जाएगा डेटा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के नए कार्ड लॉन्च, उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और पर्यटकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना। पर्यटकों को होटलों में कमरे के किराए पर 50% और भोजन पर 20% तक की मिलेगी छूट। ये तो थे क्षेत्रीय मुख्य समाचार।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पार्श्व गायिका डॉक्टर जसविंदर नरूला के गायकी सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आज दिन में 11 बजे
2: आप जब नमाज करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो दिल से ही होता है, तो ये मेरी नमाज है, संगीत मेरा पाठ है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे यही कर्म के लिए भेजा है।
1: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां, आज दिन में 11 बजे।

कार्यक्रम आज का अखबार में अब समय है क्षेत्रीय मुख्य समाचारों का। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी सुर्खियां। एपीएमसी खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा। मंडी गोविंदगढ़ में 3,099 करोड़ का फर्जी बिलिंग घोटाला, 5 पर केस दर्ज। पीएसपीसीएल में बंपर भर्ती। पावरकॉम में 2,437 अप्रेंटिस ट्रेनियों की सीधी भर्ती पर मंजूरी। पंजाबी भाषा में टेस्ट क्लियर करना अनिवार्य। वेबसाइट पर

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। समय है स्थानीय समाचारों का, ट्राई सिटी से जुड़ी सुर्खियां। शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 200 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम, 3500 प्रतिभागियों के जुटने की उम्मीद। सेक्टर 17 स्थित तिरंगा पार्क में योग का महासंगम, पीएम मोदी के संदेश के साथ होगा सामूहिक योग। कार्यक्रम स्थल तक लाने और वापस छोड़ने के लिए चलेंगी स्पेशल बसें। विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर सेक्टर 17 प्लाजा में मामला गड़बड़ है पर झूमा चंडीगढ़, शनिवार की शाम हुई सुरमई। शहर का बदलेगा मौसम, अगले 3 दिन तक धूल भरी हवाओं का अलर्ट, छाएंगे बादल। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में 1.60 करोड़ में नीलाम हुई चंडीगढ़ की 7 विरासती धरोहरें। शहर के 7 परीक्षा केंद्रों में आज होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। पुलिस सीआरपीएफ की सुरक्षा में पहुंचेगा प्रश्न पत्र, 300 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024-2025 की राज्य रिपोर्ट जारी, उत्तम 3 श्रेणी में पंचकुला दूसरे नंबर पर। सेक्टर 18 टैगोर थिएटर में फ्यूजन फेस्ट 26 में दिखेगा रंगमंच संगीत डांस का मिला जुला रंग। ये तो थी ट्राई सिटी से जुड़ी कुछ खबरें, आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, ये तो था आज का अखबार कार्यक्रम। आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ लेकर हाजिर होंगे सुबह 10:05 पर। विषय है अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनाएं योग, हर उम्र में रहें निरोग। आपकी फोन कॉल्स का रहेगा इंतजार। आज का अखबार से आपकी रेडियो संगनी बबीता कपूर लेती है विदा। नमस्कार।
1: आज का अखबार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार। इस समय आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के संग FM 107.2 MHz पर। कुछ ही पलों में 10 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर

0: हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
2: विकसित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
0: इन पोतों का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्त चित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माही में भी मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
4: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
5: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
4: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
5: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
4: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
5: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
4: वाह, ये तो

0: जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक PLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में पार्श्व गायिका डॉक्टर जसविंदर नरूला के गायकी सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज दिन में 11 बजे
4: आप जब नमाज करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो दिल से ही होता है, तो ये मेरी नमाज है, संगीत मेरा पाठ है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे यही कर्म के लिए भेजा है।
3: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
5: श्रोताओ, आज है रविवार और सुबह 11:30 बजे आप सुनेंगे अपनी पसंद के गीत। कार्यक्रम होगा हेलो सिटी ब्यूटीफुल। कार्यक्रम में आज की फिल्में हैं महबूबा, आराधना, द ट्रेन, प्रतिज्ञा, राम तेरी गंगा मैली। फिल्में हमारी और प्रसन्न आपकी। लेकिन अब समय है कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ का।
6: हेलो
7: हेलो,
6: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
7: हेलो चंडीगढ़।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपकी रेडियो संगिनी बबीता कपूर की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जी हाँ, योगा से जरूर होगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता और डिजिटल वर्ल्ड का असर ले गया है हम सभी का चैन और लगातार घट रही है मानसिक स्पष्टता और शारीरिक ऊर्जा। तो ऐसे में आज से दें अपने आप को 5 मिनट जरूर, करें योग और करें हमसे बात भी आज के विषय पर। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनाएं योग, हर उम्र में रहें निरोग, ये है हमारा हेलो चंडीगढ़ का आज का विषय। तो मिलाइए नंबर 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो चलिए करते हैं बात योग की। हेलो चंडीगढ़। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: हाँ, मैं रामचंद मखीजा काफिर भाई बोल रहा हूँ, बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, इतनी दूर से बात करने के लिए बहुत आभार आपका। आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: आज का विषय है योग दिवस है, इसकी शुभकामनाएं। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जिस तरह से हम भोजन करते हैं, शरीर में ताकत आए और हमें शारीरिक व्यायाम कसरत वगैरह भी करना चाहिए, लेकिन मन की शांति के लिए, आत्म की शांति के लिए योग जरूरी है। इससे मन संतुष्ट रहता है और आध्यात्मिक विचार बढ़ते हैं और ज्ञान का मार्ग है अपना योग।
0: जी बिल्कुल, आप भी करते हैं योग?
1: और योग जो है मेरे अंदाज में जितनी योनियां है, जितनी योनियां है हमारे प्राणियों की, उतने योग हैं। वृक्षासन, पद्मासन, सिद्धासन, कटिपिंड मृदासन, मयूरासन, सर्पासन, कई प्रकार के आसन है, जैसे जैसे हम जो देखते हैं प्रकृति में वो आसन है।
0: जी बिल्कुल, तो क्या आप करते हैं योगा?
1: जी हाँ, मैं उठते ही, यानी बचपन से आदत है, थोड़ा बहुत करते ही रहता हूँ।
0: कौन सा योगासन करते हैं आप?
1: जी जी,
0: कौन सा योगासन करते हैं आप?
1: प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये तो बिल्कुल अनिवार्य है
0: जी।
1: और शीतासन है, निशासन है, और वात, जन्य मेरा वात ज्यादा है तो पेट के बल अपना ऐसे बैठते हुए अनुलोम विलोम करना है, श्वास नाक बंद कर, कई प्रकार के हैं जो अच्छा लगे।
0: मतलब जो मन को अच्छा लगे वैसा।

0: योग आप करते हैं, तो चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: शरीर को कष्ट दे के भी कोई नहीं करना चाहिए योग वगैरह, क्योंकि तांत्रिक क्रिया अंदर के जो अवयव है उनमें असर पड़ता है, तो सीखे हुए हैं तो उन्हीं को ही करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, अगर नहीं भी सीखे हुए तो हम सीख जरूर सकते हैं।
1: हाँ सीख सकते हैं भाई, ये हमको धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे इसका करना है करके।
0: जी
1: कई प्रकार के योग हैं, हठ योग है, ये तो हमारी सनातन प्राचीन काल से चला रहा है, ध्यान योग है, इससे हम उम्र भी बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम निरोग रहने के साथ साथ जवान भी रह सकते हैं, है ना?
1: जी जी जी।
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया जी कार्यक्रम में आपका बात,
1: क्योंकि हमारे ऋषि मुनि देखो ना अपना भगवान शंकर जो पलथी मार के जो पैर के तलवे ऊपर आते हैं तो वो पलथी मार के, तो वो सिद्धासन है, वो कठिन है, और गुरु नानक देव जी जो बैठे हुए हैं वो पद्मासन है। कई प्रकार के आसन है जो हमें देखते आ रहे हैं धर्म ग्रंथों में, और अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है प्रचलन।
0: जी बहुत ज्यादा प्रचार और प्रचलन हो गया है योग का, और भारत ने एक मिसाल कायम की है योग के क्षेत्र में, विश्व तक को पहुंचा दिया है योग।
1: जी जी, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को खिताब दिलाया
0: जी,
1: तो सब अब सभी जगह हो गया, विदेशों में भी योग को महत्व दे रहे।
0: जी जी जी, बेहद शुक्रिया जी कॉल करने के लिए।
1: ओके, वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम।

जी हाँ दोस्तों, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन का विज्ञान भी है। आधुनिक जीवन शैली में ये निरोग और तनाव मुक्त जीवन का सबसे प्रभावी मार्ग

0: बनकर उभरा है। तो चलिए अब बात करते हैं कार्यक्रम में अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से।
0: जी राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज आप जानते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा।
1: योगा डे।
0: जी जी
1: जी। तो मैं इस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें योग जो है अपने जीवनचर्या में लेना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम योगा डे बनाते हैं 21 जून को, तो हम 21 जून तक सीमित ना रहे, लेकिन हमें 365 दिन करना है। ये नहीं कि जब जब योग दिवस आएगा तब करेंगे, क्या बोलते, ये तो हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये करना चाहिए जो जो स्वस्थ आदमी, जैसे युवा है, काम करने वाले, उनको तो करना चाहिए। और जैसे कि मैं तो ये कहता हूँ गांव-गांव में शिविर भी लगना चाहिए योग दिवस का, क्योंकि जैसे कि अब कुछ ब्लाइंड लोग है वो योग नहीं करते, तो इसलिए उनके लिए सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करती है, तो प्रशासन को ये करना चाहिए, जैसे कि बुजुर्ग लोग है, ब्लाइंड लोग है, जो देख नहीं सकते, उनको जो है घर घर में जो है कम से कम योग सिखाया जाए, ताकि वो भी कर पाए। लेकिन हम अपनी आज जैसे तो नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बचपन से जैसे ब्लाइंड होने के कारण मैं योग नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमारे जैसे कितने लोग है जो घर में रहते, तो उनके लिए एक शिविर का आयोजन होना चाहिए, ताकि वो भी योग कर सके, वो भी योग का लाभ ले सके।
0: जी आपने बिल्कुल सही कहा राकेश जी। एक बात तो जो आपने सबसे बड़ी ये कही कि 365 दिन योगाभ्यास करना चाहिए, ये दिन सिर्फ एक दिन, यानी कि आज जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, योग दिवस है, विश्व योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो लोग क्या करते हैं कि आज के दिन तो बाहर निकलेंगे, ग्रुप्स में जाएंगे और योगाभ्यास करेंगे, पार्कों में जाएंगे, शिविरों में जाएंगे, और जगह जहाँ जहाँ भी योगाभ्यास हो रहा है वहाँ जाएंगे, लेकिन आम दिनों में जो बाकी के दिन हैं उन दिन वो योग को जो है वो अनदेखा कर देते हैं।
1: जी हम देखा चाहते थे, अब जैसे कि कल से, जैसे आज उनने कर दिया जितना उनने करना था, तो कल से बोलो चलो अब योगा डे का समाप्त हो गया, तो जब हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये है कि ये सिर्फ योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, क्योंकि अगर हम अपना योग करेंगे तो देखो आजकल जो है बड़े बड़े बीमारियां हो रही है, कई बार किसी को कैंसर होता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होता है, तो अस्पताल जाना पड़ता है, तो अगर हम घर बैठे अगर हमारे योगा करने से अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता, तो फिर हमें अस्पताल के चक्कर ना काटने पड़े, तो इसलिए हमें योग जो है करना चाहिए।
0: बिल्कुल, योग से तो प्रतिरोधक जो क्षमता है वो भी बढ़ती है, तनाव, चिंता, अवसाद जो आजकल इन दिनों बहुत ज्यादा है, अवसाद की स्थिति, तो उससे भी उभर पाते हैं लोग। और दूसरी बात, आपने जैसा कि बताया कि जो लोग दृष्टिहीन है, जो नहीं देख सकते, उनके लिए भी शिविरों का जो है वो आयोजन करना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि आपकी और हमारी ये जो बात है वो प्रशासन तक भी पहुंचे, और आपके इर्द गिर्द, आपके इलाके, आपके जो स्थानीय, आपकी जो जगह है वहाँ पर भी ऐसे शिविर आयोजित किए जा सकें, ताकि बुजुर्गों को और जो किसी तरह से नहीं पहुँच सकते, उनके घर घर तक योग जो है वो पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी, धन्यवाद।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हमारा आज का जो विषय है वो योग से संबंधित है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनाएं योग, हर उम्र में रहें निरोग। जी हां, स्वस्थ जीवन का अमूल्य मंत्र है योग। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ, जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
2: मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकार हाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी।
1: जी नागेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
2: मैडम जी, आज योगा दिवस पर पहले तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज योगा दिवस मनाया जा रहा है और भारत के ऋषि मुनियों को और जितने भी हमारे शास्त्र वेद हैं उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है।
1: जी बिल्कुल। तो आप करते हैं योगाभ्यास नेगी जी?
2: जी
1: आप करते हैं योगा?
2: हाँ मैडम, फादर साहब 95 के हो गए और वो लगातार योगा करते हैं जिसकी कारण वो बिल्कुल स्वस्थ हैं।
1: जी उनके मतलब स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का जो राज है वो योगा में छिपा हुआ है।
2: बिल्कुल मैडम जी, और वो बचपन से हमें भी करवाते थे। बीच में जरूर कई बार ऐसा हुआ कि बीच में व्यवधान आया हम लोगों को, लेकिन वो निर्विघ्न योगा करते रहे हैं आज तक भी।
1: तो चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको तो संस्कार में ही योगा मिला है। आपके आपके खुद के घर में जो है वो योग गुरु विद्यमान है और आपको मतलब नियमित रूप से दे रहे हैं संस्कार और सिखा रहे हैं योगा। तो आपके बच्चे भी हैं करते योगा? वो भी करते हैं?
2: नहीं मैडम, वो मैंने ये चीज महसूस की कि जो हमारे आधुनिक जो युवा जो नौजवान तबका है वो योगा की तरफ कम ही रुझान रहा है उनका। जी
1: जी, क्योंकि इसका एक कारण नेगी जी ये भी है कि आजकल के बच्चों में जो है ना वो डिजिटल नशा जो है वो चढ़ा हुआ है उनमें, क्योंकि वो आजकल मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं। रील्स देखना, लाइक और कमेंट मिलना, यही बच्चों के लिए एक डोपामाइन का जो है वो असर करता है। बार बार वो यही करने की इच्छा रखते हैं कि हम मोबाइल खोलें, सोशल मीडिया पर जाएं और देखें कि हर मतलब सेकंड में क्या क्या घट रहा है। तो योगा से जो दूर हुए हैं हमारे नवयुवक या बच्चे, उसका एक सबसे बड़ा कारण जो है वो डिजिटल नशा, यानी कि सोशल मीडिया, यानी कि मोबाइल कह लीजिए या नेट कह लीजिए, इंटरनेट, ये है। तो आप उन्हें
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही मैडम जी आपने। और ये जो पहले, इससे पहले जो आपने बात कही कि घर में योगा योग गुरु मिल गए, तो योगासन के लिए जरूरी है कि किसी योगी या निपुण योग गुरु

0: की जो देख रेख में ही योगा किया जाए, अन्यथा इसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि उल्टा असर भी हो जाता है, क्योंकि ये एक निगरानी में करने वाली मतलब एक क्या कहेंगे क्रिया है, योग क्रिया जो है, अगर या तो विशेषज्ञ से सीखी जाए, किसी योग गुरु से सीखी जाए, यानी आजकल एक्चुअली क्या करते हैं लोग कि सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर भी देखकर करना शुरू कर देते हैं, तो उनका उल्टा असर भी हो सकता है। तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना, अपने शरीर के हिसाब से योग क्रियाएं करना, ये भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल मैडम जी, योग साधक की सलाह तो बहुत ज्यादा लाजमी है जी, क्योंकि योग साधक के बगैर जो है वो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन जिसने योगा की तरफ जिसका रुझान हो, जिसने की कहीं सीखा हो। और मैंने एक चीज और महसूस की मैडम जी कि पहले तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथी डॉक्टर या वैद्य लोग जो थे वो योग करने की सलाह देते थे, लेकिन आजकल जो बड़े बड़े विशेषज्ञ एलोपैथी के डॉक्टर और मेडिकल साइंस के शोध में भी ये पाया गया है कि मरीजों को कई असाध्य रोगों से उपचार के लिए योगासन जो है सिखाया जा रहा है जी।
1: जी बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी,
0: तो ये एक हमारे लिए खुशी की बात भी है, और इससे ना सिर्फ हम स्वस्थ होते हैं बल्कि शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आधार बन चुका है योगा जी।
1: जी अच्छा नेगी जी, अब एक मिनट मुझे भी आप समय दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज फादर्स डे भी है, और आपने बताया कि आपके पिताजी जो हैं वो 95 वर्ष की आयु में हैं, तो हमारी ओर से उन्हें फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद मैडम जी, ये बहुत संयोग की बात कह सकते हैं कि आज बुजुर्गों के लिए भी एक बहुत अच्छा दिन है, और विशेष तौर पर वो रिश्ता जिसकी हम लोग अक्सर कम अहमियत महसूस करते हैं, माँ की तरफ ज्यादा रुझान होता है बच्चों का, लेकिन जो पिता जो करता है चुपचाप साइलेंटली जो करते रहते हैं वो एक बहुत महान मतलब कार्य है जी।
1: जी, जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया नेगी जी,
0: धन्यवाद, नमस्कार जी।

0: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ से समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हमारे कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो हमें सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पेज हेलो चंडीगढ़ 107.2 MHZ के जरिए भी अपने संदेश भेज रहे हैं। रवि कुमार राहुल वे लिखते हैं कि योग एक प्राचीन पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाती है। नियमित योगाभ्यास से तनाव दूर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मधुमेह, उच्च रक्तचाप व जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं नियंत्रित होती हैं। और एक छोटा सा विचार योग दिवस के लिए, योग मतलब सिर्फ आसन नहीं, ये सांस, शरीर और मन को एक लय में लाने का नाम है। 5 मिनट की गहरी सांस, 2 मिनट का मौन या एक सूर्य नमस्कार, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन असर जो है वो बड़ा होगा। बिल्कुल सही कहा रवि कुमार राहुल जी ने। और आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
4: नमस्कार मैडम।
3: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
4: रविंदर कुमार कैंबो बोल रहा हूँ मैडम, गुराया डिस्ट्रिक्ट जलंधर से।
3: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस विषय पर?
4: देखिए मैडम, ये भी संयोग है कि फादर डे और योगा डे आज एक ही दिन में आ गए।
3: जी बिल्कुल।
4: हाँ, तो मतलब योगा का तो ये है कि योगा मतलब जिंदगी एक जीने की एक पद्धति है जिस पे सबको अमल करना चाहिए। हमको जरूरी नहीं कि ज्यादा भी करें, लेकिन आधा घंटा तो जरूर निकालना चाहिए योगा के लिए सुबह उठ के, तो जो आपकी जीवन शैली है वो सारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा सुबह ही मिलता है।
3: जी बिल्कुल, क्योंकि खाली पेट रहता है और
4: सूरज निकलने से पहले ना इसका जो जो करें तो बढ़िया है समय का। बाकी तो जब मर्जी कर लो वो ठीक है, लेकिन ज्यादा फायदा अगर लेना है तो सुबह मतलब जल्दी सूरज निकलने से पहले करना चाहिए योगा। तो बाकी ये भी आपने पहले भी बोला है कि योगा किसी मतलब योगाचार्य की देखरेख में ही करना चाहिए।
3: जी,
4: जैसे हम लोग कई हैं वो YouTube पर देख के कर लेते हैं, जैसे एक शीश आसन है ना, शीश आसन, वो अगर हम बगैर किसी की सलाह के कर लें तो उससे एकदम BP बढ़ जाता है, क्योंकि उल्टा होके वो आसन करना पड़ता है। तो इस तरह मतलब योगा जो है किसी देख रेख में करना चाहिए। और जैसे कपाल भाती भी है, वो भी लोग है ऐसे करते हैं कि पूरा शरीर ही हिलने लग जाता है, उसकी वो विधि नहीं होती, वो मतलब अपना सिर्फ पेट हिलना चाहिए। तो मतलब कई ऐसे आसन है जो मतलब आपको नुकसान कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल,
4: योगा आसन जो भी करना है ना वो आराम से शांति से, मतलब ऐसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, जैसे योगाचार्य बताते हैं वैसे करें
3: जी,
4: तो इसका दुगना लाभ होगा आपको।
3: और गुरैया जी, आपने एक बात और भी कही अपने संदेश के माध्यम से कि आज फादर्स डे है, और हम ये कहना चाहते हैं कि जो पुरुषों का जो स्वास्थ्य है उसे भी प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए, क्योंकि बदलते समय में जो आदमी है या घर के जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, फादर हैं, आपके पति हैं या आपके भाई हैं या आपके मित्र हैं, वो मानसिक, भावनात्मक और घरेलू प्रताड़ना का भी सामना कर रहे हैं। और पुरुषों को हमेशा से, बचपन से ही हम लड़कों को ये बात समझा देते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को भी दर्द होता है, और सामाजिक संकोच के कारण खुलकर वो अपनी बात कह नहीं पाते।

0: सकते। तो ऐसे में हम सभी का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम उनकी भी संवेदनशीलता को सुने, समझें और उसे समय दें और उनकी भावनाओं का सम्मान भी करें।
1: बिल्कुल, उनको जिम्मेवारी होती ना पूरे परिवार की, कमाने की जिम्मेवारी है, जो उस पे टेंशन बहुत होती है। तो मतलब वो काम के लिए समय भी नहीं निकाल सकते, वो हर रोज 40-50 रुपए की गोलियां तो सुबह खा सकते हैं
0: बिल्कुल
1: बीपी शुगर की, लेकिन वो अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते।
0: तो ये बात,
1: प्रेशर होता है ना पैसा कमाने का और काम पे जाने का, ऐसे बोझ होते हैं, इसलिए वो समय दे नहीं पाते। आजकल तो वैसे ही जिंदगी की भागदौड़ ऐसी हो गई है कि किसी के पास समय है ही नहीं।
0: देखिए, मतलब बेशक समय की कमी है, बेशक हम कह रहे हैं कि जिंदगी भाग दौड़ भरी है, लेकिन एक बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जैसा आपने भी कहा कि हम बीपी की शुगर की दवाइयां खा लेंगे, उसके लिए भी देखिए 5 मिनट तो समय निकालना ही पड़ता है। तो वो 5 मिनट का समय अगर हम अपने श्वास को दे दें, आप डीप ब्रीदिंग कर लें, आप अनुलोम विलोम कर लें, तो उससे भी आपको कितने ही फायदे मिल सकते हैं। तो इस चीज के लिए उनको भी समझना है, पुरुषों को भी समझना है, जो हमारे घर के पुरुष हैं उन्हें भी समझना है, और उसके साथ साथ अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें उन्हें समझाना है कि उनका स्वास्थ्य
1: योगा तो
0: जरूरी
1: सबके लिए जरूरी है, बच्चों के लिए भी जरूरी है और औरतों के लिए भी जरूरी है। यानी कि घर की गृहिणी है, जब वो ना योगा करे, उसको भी चाहिए कि वो अपने लिए सुबह 10-15 मिनट आधा घंटा जो भी है वो निकाले।
0: देखिए, इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि हम सभी, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे महिला है, चाहे पुरुष हैं, हम सभी योगा करें। कार्यक्रम में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ, शुक्रिया मैडम।

0: श्रोताओ, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा और सोशल मीडिया पेज हेलो चंडीगढ़ 107.2 MHZ पर हमें कुछ संदेश प्राप्त हुए हैं। रिहाना खान भाकड़, रामचंद मखीजा, रामकुमार रिवार हमें भेज रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं और कह रहे हैं धीरज भाई राबरी कि आज का जो विषय है हेलो चंडीगढ़ का वो प्रेरक विषय है, तो अपनी बात जरूर रखें। बेशक श्रोता हमसे बात कर रहे हैं, अपने विचार हमसे साझा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: धीरज रबारी बात कर रहा हूँ, गुजरात से।

0: होगा और सोशल मीडिया पेज हेलो चंडीगढ़ 107.2 MHz पर हमें कुछ संदेश प्राप्त हुए हैं। रिहाना खान भाकड़, रामचंद मखीजा, रामकुमार रिवाड़ हमें भेज रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं और कह रहे हैं धीरज भाई राबड़ी कि आज का जो विषय है हेलो चंडीगढ़ का वो प्रेरक विषय है, तो अपनी बात जरूर रखें। बेशक श्रोता हमसे बात कर रहे हैं, अपने विचार हमसे साझा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: धीरज रबारी बात कर रहा हूँ, गुजरात से, गांव डेर, तहसील जिला पाटन।
0: आपने अभी हमारे फेसबुक पेज पर भी मेरे ख्याल से मैसेज छोड़ा है ना?
1: जी जी जी, और जो आपने ये कार्यक्रम किया शुरू किया है यानी चल रहा है
0: जी,
1: तो जो विषय लेकर आते हैं बहुत सटीक विषय होते हैं और हमें बहुत ये जरूरी यानी हमारे जीवन में बहुत काम कर रहे हैं ये विषय रहते हैं
0: जी। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि जो विषय हैं हम ऐसे चुनें जो हम सभी से संबंधित हों, जिससे हम सभी को मदद मिल सके, कुछ जानकारी मिल सके। तो आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: आज के विषय पर तो आज पूरा भारत में योग दिन मनाया जा रहा है
0: जी।
1: और सुबह से लेकर अभी तक हम अगर कोई योगा क्लासेस में न जा सके तो कोई नहीं, लेकिन घर में बैठ के हमें सुबह का टाइम लेकर शाम का टाइम लेकर 15-20 मिनट आधा घंटा योग कर सकते हैं। अगर कभी कभार समय नहीं मिलता है तो हमारे कार्यस्थल अगर नजदीक है, रोजगार है यानी नौकरी है, जॉब है, तो वहाँ भी हमारे शारीरिक कसरत पैदल जाके भी हम योग का पूर्ति कर सकते हैं। दीदी कई जरिए है, तो योग अगर हम रोजाना नहीं कर सकते, कभी कभार भूल जाते हैं, तो कई जरिए है, खेतों में काम करके भी कर सकते हैं, घरेलू काम करके भी कर सकते हैं, तो योग करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया रहता है।
0: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि योग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको आसपास बिल्कुल शांत माहौल ही चाहिए या आपको आसपास कोई योगा मैट चाहिए जिसके ऊपर लेटकर आप योगा कर सकें। आप दफ्तर में हैं, घर में हैं, किसी पार्क में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे भी योगा कर सकते हैं। वो कैसे कि आप अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो ये सांस है इसी से हमारी ज़िंदगी चल रही है। सबसे पहले सांस को अगर हम नियंत्रित कर लें तो समझ लीजिए कि योगा का जो एक हिस्सा है वो हमने पा लिया। तो बिल्कुल सही बात कही कि योग करने के लिए आप बहाने ना बनाएं सबसे पहले तो, कि हमारे पास तो जी योगा मैट नहीं है, हमारे पास तो ऐसी कोई जगह नहीं है। आप अगर 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो वो भी योगा ही है। सैर कर सकते हैं आप, टहल सकते हैं अपने अपने घर में, अपनी जैसे महिलाएं हैं अगर रसोई में काम कर रही हैं तो रसोई में काम करते करते जब तक कि तड़का लगा रही हैं या कुकर की विसल का इंतज़ार कर रही हैं तो आप रसोई में टहल भी सकती हैं, तो वो भी एक तरह का योगा ही है, एक एक एक्सरसाइज है, तो हम वो कर सकते हैं।
1: दीदी आपने सही फरमाया, घर हमारा एक जिम है, कसरत खाना है, अगर जो हो सके तो हम जिम जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर जो हमारे घरेलू कार्य है, हमारे खेतों के कार्य है, तो वो सब इसमें पहले देखा जाए तो हमारे बहन और भाई जो खेती के कार्य करते थे, घरेलू कार्य करते थे, वहाँ हमें कहीं कसरत खाने या जिम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
0: बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती थी। महिलाएं चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी और कपड़े धोती थी, तो वो थापी मारती थी, कपड़े जो हैं वो भारी भरकम एक लकड़ी का एक डंडा कह लीजिए या पंजाबी में थापी बोलते हैं उसको, तो उससे जब कपड़े पीटती थी तो वो भी एक तरह का व्यायाम ही था। तो कहते हैं ना कि पुराने बुजुर्गों को योगा की करने की क्यों जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका जो घरेलू काम था वो भी योगा से कम नहीं था।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: और देखा जाए तो हमारा स्वास्थ्य जो अच्छा है और हमारा आहार अच्छा है और हमारे हवामान अच्छा है तो कोई रोग हमारे पास नहीं आ सकता है मेरे ख्याल से।
0: जी बिल्कुल, खान पान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज तो कर ली, आपने योग तो कर लिया, लेकिन उसके बाद तला भुना चटपटा बाहर का खाना खा लिया तो सब चौपट कर रहे हैं आप। तो अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखें और योग जरूर करें। कार्यक्रम में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे पर और बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, बात कर रहे हैं योग की। चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: हाँ जी हेलो चंडीगढ़ जी, नमस्कार भैन जी।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम च। तुहाडा की कहना चाहते हो अज दे विषय ते तुसी?
1: मैं पटियाले तो बोल रहा जी, शरण भल्ला जी।
0: हाँ जी भल्ला जी, की कहना चाहते हो?
1: ये जरा योगा ना जी, ये तो रामदेव नु भी याद करना चाहिए जी।
0: जी
1: ये जी संस्कृति है ना जी, हिंदू सनातन धर्म की हजारों साल पुरानी है जी। ग्रंथा ऋषियां मुनिया ने चालू की थी, पर कुछ रामदेव ने चालू करके ते कुछ एहसान करता लोगों ने। उस तो बाद मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहना है। ये बारवां योगा दिवस मना रहे हैं जी, बारवां
0: जी।
1: बारह साल कहते ने कि 12 साल हो
0: जी, बिल्कुल।
1: इन्हों तो 12,000 साल भी कही तो थोड़ा है जी।
0: देखो जेड़ा योगा है वह अज का नहीं चल रहा, वह बहुत पुराना साढ़े ऋषिया मुनिया दे समय तो चलता आ रहा। बस गल यह है कि असी विचक न आके कह सकते हैं कि भुल गए सीगे, साढ़े चेते नहीं रहा।
1: ने कुछ याद कराया, पतंजलि वाले ने, ऋषि मुनिया ने याद कराया, कुछ खुराक ने याद कराया
0: जी।
1: कुछ लोगों में अगे भी गल हुई, मैं कहना है कि योगा जेड़ा बिना गुरु तो नहीं होना चाहिए।
0: वैसे भी जी कहते हैं कि गुरु बिना तो गति भी नहीं होंगी।
1: गुरु बिना योगा ना करो, पर योगा करने से कुछ कुछ जरूर होगा
0: जी। बिल्कुल, योगा से जरूर होगा, ये भी गल बिल्कुल सही है। तो तुसी कर दे योगा?
1: कुछ कुछ होता है, लेकिन कुछ कुछ होता नहीं, सब कुछ होता है योगा से।
0: जी असि गाना चलाया सी जी, कुछ कुछ होता है, बिल्कुल योगा नाल दा सारा कुछ ही होंदा। तो तुसी कर दे योगा?
1: मेरी 70 साल 71 साल उम्र है जी। मैं योगा तो आपने बोला ना कि खेतों में जो लोग बोल रहे हैं ना जी, शिव जी का गुरु नानक का ये योग जो है ना, घर बैठे भी हो सकता है। आप आसन लगा के बैठ जाओ, किसी का मूर्ति का ध्यान रख लो, सामने मूर्ति रख लो, पहले तो इसमें ध्यान सीखना जरूरी है जी।
0: बिल्कुल, मेडिटेशन कहते हैं जी इन्हों अजकल, मेडिटेशन कहने लगे। कहन लगे मेडिटेशन मेडिटेशन, पर मेडिटेशन असल च है कि ध्यान लगाना ही मेडिटेशन है। उन्हों आपा मेडिटेशन कह देने,
1: ध्यान लग गया जी, उन्हों योगा करने की लोड़ ही नहीं है जी।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि ध्यान लग गया वो तो परमात्मा ना जुड़,

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवा में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पार्श्व गायिका डॉक्टर जसविंदर नरूला के गायकी सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।
1: आप जब नमाज करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो दिल से ही होता है, तो ये मेरी नमाज है, संगीत मेरा पाठ है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे यही कर्म के लिए भेजा है।
0: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में आज हम बात कर रहे हैं योग पर। आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।

0: हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, पिंजौर से बोल रहा हूँ, बिटना रोड से।
0: जी क्या कहना चाहेंगे योग पर आप?
1: मैम योग तो हमारे भोलेनाथ भी करते थे
0: जी,
1: वो भी करते थे योग तो, और वो ये तो इससे तो जो हमारा शरीर की बॉडी है वो अलग एक ऐसी चीज हो जाती है कि तरोताजा, जैसे कि हम नहा के फ्रेश होते हैं ऐसी हमारी बॉडी हो जाती है, नहा के फ्रेश।
0: बिल्कुल,
1: जब हम योगा करते
0: हैं ये शुद्धिकरण है हमारे शरीर का, मानसिक शुद्धिकरण है योग।
1: हाँ जी
0: जी, तो आप
1: तो ये तो मतलब मैम ये तो हमारे जैसे हम पूरे दिन काम करते हैं तो यदि हम आधा घंटा अपना शरीर के लिए निकाल ले तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: सिर्फ आधा घंटा ही कर ले, हम आधे घंटे में हमारा शरीर ऐसा हो जाएगा कि बॉडी बिल्कुल सेट हो जाएगी हमारी पूरे दिन के लिए।
0: बिल्कुल जी, जो लोग योग नहीं करते हैं वो कम से कम आज के दिन से शुरुआत तो करें, 5 मिनट अपने लिए निकालें, आधा घंटे तक फिर वो पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे। तो आप भी करते हैं क्या योगा?
1: बिल्कुल करता हूँ मैम, मैं तो रह ही नहीं सकता इसके बगैर। मैं तो रह ही नहीं सकता मैम, मैं तो ऐसा लगता हूँ जैसे कि ना करूँ बीमार हूँ मैं।
0: मतलब आपकी मतलब एक जो जीवन शैली है आपके दिन का हिस्सा है योग।
1: हाँ आधा घंटा करता, आधा घंटा ही हूँ मैम मैं परमानेंट।
0: जी जी,
1: सुबह के टाइम सर्दी हो गर्मी हो जो मर्जी हो आधा घंटा करता हूँ मैम।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है जी, आप योग करते हैं अब
1: और बॉडी बिल्कुल सेट रहती है मेरी पूरे दिन के लिए।
0: जी बहुत अच्छी बात है, आपसे प्रेरणा ले रहे होंगे हमारे जो बाकी भी जो लिसनर्स हैं वो प्रेरणा
1: लेंगे। मैं बोलता रही हूँ, बोलता रही हूँ कुछ भी ये कुछ में हम पूरे दिन के लिए 24 घंटे हमारे पास है, घंटा इसमें लगा लेंगे, तुम देखो शरीर कितना फिट रहता है हमारा।
0: जी जी जी, चलिए देखिए कार्यक्रम में अब समय जो है वो बहुत ही कम रह गया है, तो चलते चलते हम चाहते हैं कि एक गाना भी आपको सुना दें क्योंकि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, तो संगीत से बेहतर योग और कोई नहीं।

0: अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनाएं योग, हर उम्र में रहें निरोग। ये तो था हमारा आज का विषय। हम कर रहे थे इस विषय पर बातचीत। आप सभी स्वस्थ रहें इसी कामना के साथ आपकी रेडियो संगिनी बबीता कपूर लेती है कार्यक्रम में आपसे विदा। नमस्कार।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी।

0: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
4: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए, अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां। यादों का कारवां, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के 7वें एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त रमेश कपूर। नमस्कार दोस्तों, यादों का कारवां श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा का वो एपिसोड जिसमें हमने आपकी मुलाकात जानी मानी पार्श्व गायिका डॉक्टर जसपिंदर नरूला से करवाई थी। तो लीजिए सुनिए पार्श्व गायिका डॉक्टर जसपिंदर नरूला के गायकी सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी।
5: जिंदगीनामा, शानदार जिंदगी की बेमिसाल कहानियां।
6: दोस्तों, जिंदगीनामा प्रोग्राम में आज हम उस शख्सियत की जिंदगी से जुड़ी बातें करेंगे जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है। अपने अलग अंदाज और अपनी बुलंद आवाज से जिन्होंने सुफियाना कलाम से लेकर फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपने संगीतमय सफर में अपना खास मकाम हासिल किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका डॉक्टर जसपिंदर नरूला की।

गायकी जसविंदर नरूला को विरासत में मिली, संगीतकार KS नरूला और गायिका मोहिनी नरूला की लाडली बेटी जसविंदर नरूला को बचपन से ही संगीत से लगाव था। इनके संगीतमय सफर की शुरुआत शब्द गायन, भजन और लोक गीतों से हुई।

गायकी में इनकी रेंज का कोई मुकाबला नहीं। सूफी गायकी से शुरू हुआ इनका सफर हिंदी फिल्मों तक पहुंचा और इस सफर में इन्होंने सिने जगत को दिए

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुकी डॉक्टर जसविंदर नरूला संगीत का वो चमकता सितारा हैं जो आज हमारे साथ हैं जिंदगी नामा प्रोग्राम में। जसविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी नामा प्रोग्राम में।
1: थैंक यू सो मच।
0: आपके संगीत सफर की बात करें तो शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई?
1: रमेश जी, आप जलंधर शहर के हैं, राइट
0: जी?
1: तो मैं याद कराना चाहूंगी, अगर बहुतों को याद होगा, लेकिन हमारे नए जो बच्चे उसके बाद आए हैं उनको शायद नहीं मालूम कि मैं सबसे पहले जब जलंधर दूरदर्शन का उद्घाटन हुआ
0: जी,
1: तो मुझे गोदी में उठा के मनमोहन कृष्ण जी और हमारी एक एंकर हुआ करती थी, प्रोड्यूसर भी थी दिल्ली दूरदर्शन पर, सुधा चोपड़ा जी,
0: जी, जी
1: उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। और मेरा पहला गाना जो मैंने जलंधर वासियों के लिए गाया था, पूरे पंजाब के लिए गाया था और पूरे हिंदुस्तान के लिए पहली बार उस उम्र में, उस 8 साल की उम्र में मैंने पहला गाना गाया था, वो था तमाम मस्त कलंदर।
0: जसविंदर जी, थोड़ा सा गुनगुना के वो हमारे श्रोताओं को आज भी वो बताइए, क्योंकि वो यादें ताजा हो जाएंगी एकदम।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। ओ लाल मेरी पसंद रखिए भला झूले लाल सिंदड़ी कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला लंबर, दमादम मस्त कलंदर अली शाबाज कलंदर, हो लाल मेरी, लाल मेरी।
0: बिल्कुल वही सीन एकदम मेरे सामने आ गया जब आप बिल्कुल छोटी सी थी, 8 साल की उम्र की थी और टीवी में हमने आपको देखा था, मैं भी बहुत छोटा था तब, और बहुत अच्छा लगता था कि एक छोटी सी लड़की, यकीन मानिए जब ये प्रोग्राम टीवी पे चल रहा था तो मेरे फादर ने कहा था कि ये लड़की बड़ी होके बहुत बड़ी कलाकार बनेगी, और आपने वो कर दिखाया।
1: आपके फादर साहब जैसे बुजुर्ग हैं, जिनकी दुआएं और जिनके आशीर्वाद से आज मैं जहां हूं वहां हूं। इस तरह जैसे आज आपने याद कराया, कल रात को मैं किसी पार्टी में थी, वहां एक शख्स मुझे मिले जो मेरे हम उम्र ही होंगे, बोले कि जब आपको हम टीवी पे देखते थे तो हमारे मम्मी डैडी कहते थे देखो वो, देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, कैसा गा रही है, आप भी ऐसे बनो कहते, तो हमें तो वो यादें याद है। और आज आपने मुझे ये बात याद दिलाई दोबारा, और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपके पेरेंट्स की और बाकी इतने तमाम जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों की जिन लोगों ने मुझे बहुत दुआएं और बहुत आशीर्वाद दिए हैं। और मैं सच बोलूं भैया, आप, मैं इस वक्त चाहती हूं कि आपकी दुआएं, एक बार फिर आपके आशीर्वाद, मुझे आप लोगों के सबके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरी आवाज सारे पंजाब की आवाज है, मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि बॉम्बे शहर में रहने के बाद भी मुझे लोग जो हैं वो दिल्ली नहीं, वो मुझे हर वक्त पंजाब की ही समझते हैं, वो कहते हैं आप पंजाब से हैं, तो यही जहाँ जसविंदर नरूला का नाम आता है वहाँ पंजाब तो लगता ही है
0: जी। बिल्कुल, देखिए आपने इतनी मेहनत की और पंजाब का नाम रोशन किया आपने, जब भी आपका नाम आता है साथ में पंजाब का नाम आता है।
1: एक गाना याद आता है मुझे, मेरे लूलू रखिया प्यार तेरा, ओ मेरे

0: तेरा।
1: जसपिंदर जी, आपके संगीतमय सफर की कहानी हम यूं ही जारी रखेंगे। आपका गाया गीत विरासत फिल्म का तारे हैं बाराती अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल।

0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी नामा और आज इस कार्यक्रम में हम जानी मानी पार्श्व गायिका डॉक्टर जसविंदर नरूला से बात कर रहे हैं। जसविंदर, क्योंकि आपके पिताजी खुद उस वक्त के बड़े संगीतकार थे और आपकी माताजी एक गायिका रही, तो आपके माता पिता का क्या योगदान रहा इस संगीतमय सफर में?
1: बस उन्हीं का ही था, ईश्वर के बाद तो सारा रोल उन्हीं का था। मैं तो इस उम्र में ही नहीं थी।

0: बहुत छोटी उम्र थी, जानती नहीं थी कि मैं क्या थी, तो उसको बनाने में निखारने में उन्हीं का ही हाथ है, मेरे वालिद और वालदैन का। वक्त का पता ही नहीं चला और किस तरह की आधी जिंदगी बीत गई, यहाँ तक पहुँच गई कि आज जब पीछे देखती हूँ मुड़ के, वो पहला दिन जिस दिन शुरुआत हुई तो ऐसा लगता है जैसे कल ही हुआ था वो सब, लेकिन एक बहुत लंबा सफर तय किया मैंने।
1: जी जसविंदर जी, अगर सूफी गायकी की बात करें तो इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ?
0: एक सिख परिवार से हूँ और सिखों के अलावा मेरी माँ मेरी जो है वो ब्राह्मण परिवार से हैं, तो एक कॉम्बिनेशन। तो मेरा मंदिर में जाना और प्रसाद चढ़ा के आना और व्रत रखने भगवान की तरफ, ये सब मेरे अंदर अपने आप ही आया। घर पे ऐसा कुछ नहीं होता था, गुरुद्वारा साहब जाते थे, मत्था टेकते थे, शब्द कीर्तन शुरू से बचपन से पहला जो मैंने गाया वो शब्द था। जब मेरी एल्बम हुई 8 साल की उम्र में, वो भी डिवोशनल एल्बम थी।
1: जी, जिस एल्बम की आप बात कर रही हैं जो आपकी 8 साल की उम्र में आई थी, उसका क्या नाम था और थोड़ा सा उस डिवोशनल एल्बम से शब्द थोड़ा सा गुनगुना के आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
0: दशमेश पिताजी प्यारे, तेरा नाम नहीं मिटना।

0: वाह, बहुत खूब। फैमिली और गायकी में किस तरह से तालमेल बना के रखती हैं?
1: I love everyone and especially my family gave me so much of support since I was a child. अगर डैड मॉम ना समझते तो मैं आज यहाँ ना होती जहाँ हूँ। आप जब नमाज करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो दिल से ही होता है, तो ये मेरी नमाज है, संगीत मेरा पाठ है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे यही कर्म के लिए भेजा है कि पहले बच्चों के प्रोग्राम में जो मैंने गाया वो भी बाबा भुल्ले शाह का कलाम गाया।
0: जी, थोड़ा सा गुनगुना के आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
1: बेशक मंदिर मस्जिद ता दे

जिस दिल में दिलबर रहता, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत,

0: नहीं बोलना जा, मैं नहीं बोलना जा, वे मैं नहीं बोलना जा, बोलना मैं नहीं बोलना।
1: जसपिंदर जी, अगर बॉलीवुड में आपकी एंट्री की अगर हम बात करें तो पहला फिल्मी गाना किसने गवाया आपसे?
0: सबसे पहला ग्रुप जगजीत सिंह जी। इट वॉज जस्ट डेस्टिन्ड, इट वॉज रिटन फॉर मी, एंड अगेन अध्यात्म से जुड़ा हुआ। जो फर्स्ट हिंदी में बोलूंगी तो वो था गिवन टू मी बाय विजू शाह। नवकेतन की एक फिल्म बन रही थी मास्टर, और उसके लिए मुझे उन्होंने गवाया है।
1: जी, जसपिंदर गोविंदा की एक फिल्म आई थी दूल्हे राजा, और उसमें आपका वो गीत अखियों से गोली मारे बहुत ही मकबूल हुआ। हम आपके लिए और अपने श्रोताओं के लिए प्ले करें?
0: बिल्कुल, क्यों नहीं।

0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी नामा। और आज इस कार्यक्रम में हम जानी मानी पार्श्व गायिका डॉक्टर जसपिंदर नरूला से बात कर रहे हैं। जसपिंदर जी, आज जिस मकाम पर आप हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगे?
1: मैं सबसे बड़ा श्रेय ईश्वर को और फिर सारी जनता को देना चाहती हूँ, क्योंकि ईश्वर जो है वो आप सब में विराजमान है, आप सब में है। तो जब आपको नाम शोहरत मिलता है, आपको प्यार मिलता है या आपको आपकी रुसवाई होती है, तो वो ईश्वर का एक आपको फल देने का एक वो जरिया बनाता है। तो मेरी जिंदगी में हमेशा जो है आवाम जो है वो ईश्वर के रूप में आई है और उन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है, इज्जत दी है, मान दिया है, इतना सम्मान दिया है, मैं लखा और करोड़ा उन्होंने धन्यवाद कर दिया।

0: जी। और जसविंदर नरूला जी, आपको देख देख के बहुत से पंजाब के और भी जो गायक हैं, गायिकाएं हैं, जो आगे आना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से वो?
1: मैं ये चाहती हूँ कि अपने काम को ऐसा करें, अपने आप को पका लें उसमें, अपने काम में पूरी पाकीजगी के साथ अपना काम करें। पूरी पाकीजगी का मतलब आप समझते हैं
0: जी।
1: मैंने काम को आज 33-34 साल हो गए मुझे ये काम में, मैं बचपन से शुरू हुई थी और इस काम को मैंने इतना अच्छे से किया है कि मेहनत करके मैं इस जगह पर पहुंची हूं। और इसके अलावा इसमें आशीर्वाद जुड़े हुए हैं और किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मेहनत के बाद आशीर्वाद मिले और इस पाकीजगी के साथ मैंने इस काम को किया है। और वो जो गाना होता है, जो उसमें जो भी कुछ आप कहते हैं, सभी लोगों के दिलों को छूता है जब उसमें सच्चाई होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: ज्यादा देर तक लोगों के दिलों में वाबस्ता रहता है।
2: जसविंदर जी, फिल्म प्यार तो होना ही था का जो टाइटल गीत है आपने रेमो फर्नांडिस के साथ गाया था और इस गीत के लिए आपको अवार्ड भी हासिल हुआ, तो ये गीत आपको और अपने श्रोताओं को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, वो मेरा फेवरेट।

0: जसविंदर जी, आप जिंदगी नामा कार्यक्रम का हिस्सा बनी, आपने अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: रमेश जी, इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं रमेश जी, और अपने सुनने वालों का। आप के आशीर्वाद की जरूरत है, और बस इसी तरह अगर प्यार बना रहेगा तो हम भी आपके लिए सदैव गाते रहेंगे अच्छे अच्छे गाने, और आप भी हमारा सहयोग दीजिए। इस वक्त आप लोगों के सहयोग की, आशीर्वाद की, दुआओं की जरूरत है।
0: दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कार्य

0: में अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में जानी मानी पार्श्व गायिका डॉक्टर जसविंदर नरूला के गायकी सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। यादों का कारवां श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कोई यादगार पूर्व प्रसारित कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अश्विनी कुमार। अब यादों का कारवां श्रृंखला की इस कड़ी को समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। आप सुन रहे थे श्रृंखला यादों का कारवां FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़। आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
2: हेलो सिटी ब्यूटीफुल, बोल दिया।
3: ए, क्या मैं बोलूं?
4: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज जिन फिल्मों से आप गीत सुन सकते हैं वो फिल्में हैं महबूबा, आराधना, द ट्रेन, प्रतिज्ञा और राम तेरी गंगा मैली। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए आप अभी हमें फोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर हैं 2661526 0617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
5: रमेश भाई साहब को यश कुमार वर्मा जी, प्यार भाई नमस्कार।
0: यश कुमार वर्मा जी, कैसे हैं आप?
5: बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।
0: आज तो आपकी तबीयत कुछ ठीक लग रही है ना?
5: जी जी जी, मैं ये सोच रहा था कि आज फोन करते।
0: जी तो सबसे पहले तो बताइए कि ये जो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हम श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें जो पूर्व प्रसारित कार्यक्रम आपको सुनवाए जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं?
5: बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे आज जसविंदर ने जी बात सुनवाए तो इतना अच्छा लगा, पंजाबी गीत मैं बल्ले बल्ले करा रही बिल्कुल।
0: तो यश कुमार वर्मा जी, कौन सी फिल्म का कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
5: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी।
0: जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया फोन करने के लिए। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर द ट्रेन फिल्म का ये गीत।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। और अब जो फिल्में हमारे पास बची हैं वो फिल्में हैं महबूबा, आराधना, प्रतिज्ञा और राम तेरी गंगा मैली। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। हेलो सिटी ब्यूटीफुल है जी।
1: हाँ जी, है तो सिटी ब्यूटीफुल जी। मैं पंजाब पटियाला से बोल रहा हूँ जी, शरण भल्ला जी।
0: जी शरण भल्ला जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है जी। बाबू जी तेरी आवाज सुन के मन खुश हो गया। आज तो दिन बना दिया। आपने निरुला से बात कराई ना, जो आपने इंटरव्यू लिया
0: जी,
1: जिस कलाकार को रूबरू सुना हो ना सामने लाइव, उसका सुनने में मजा कुछ और आता है जी।
0: तो कैसे लग रहे हैं आपको आकाशवाणी चंडीगढ़ के प्रोग्राम्स?
1: बहुत बहुत प्रोग्राम अच्छे हैं जी। मैं तो सुनता ही यही हूँ, सुबह से लगा देता हूँ आपका, जो बॉम्बे से आता त्रिवेणी ये सारे सुनता रहता हूँ।
0: काम क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मेरी 70 साल उम्र है जी, मैं तो रिटायर अभी बैठा हूँ घर में।
0: अच्छा, तो
1: 70 साल हो गए।
0: कितनी देर से रेडियो सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ खास तौर पर?
1: नाका कीतमाला सलोन से सुन रहा हूँ, जो बड़े बड़े ट्यूब के गाने होते थे ना जी, सोच घुमाते थे, ट्यूब सेंटर में आती थी, तभी से सुन रहा हूँ जी मैं तो गाने। कत्तर का तो और लड़ाई का जब हाल सुनते थे, पैंसठ का हाल भी सुना है मैंने
0: रेडियो
1: पे। रेडियो भी सुना है कत्तर का हाल, की हम दिल्ली पहुंच के झूठ बोलते थे ना लाहौर वाले।
0: चलिए शरण भल्ला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे?
1: राम तेरी गंगा मैली का गाना है जी, एक मीरा एक राधा है
0: जी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।
1: ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सिटी ब्यूटीफुल, और इस कार्यक्रम में हम आपके फरमाइशी फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं। और अब जो फिल्में हैं हमारे पास, वो फिल्में हैं महबूबा, आराधना और प्रतिज्ञा। इन फिल्मों से आप गीत सुनने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, संजय बोल रहे हैं। मैं
0: संजय जी, कितों बोल रहे हो?
1: नाभे तो बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पटियाला जी।
0: और की हाल चाल है तुहाडा?
1: बहुत वधिया जी, तुहाडे आकाशवाणी दे प्रोग्राम सारे ही वधिया ने जी।
0: केड़े केड़े खास प्रोग्राम सुनते हो तुसी?
1: ऐ पुछो जी, तुसी छड़दे केड़े हो जी? ऐ पुछो जी।
0: अच्छा, कोई प्रोग्राम नहीं छड़दे तुसी?
1: कोई नहीं, सवेरे वंदना शुरू होंदा सवेरे 6:30 तो
0: अच्छा।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी की ओर से रमेश कपूर भाई साहब को सवेर वाली नमस्ते है जी।
0: नमस्ते है जी आपको भी सवेर वाली। कैसे हैं गुलाटी साहब?
1: बढ़िया कपूर साहब, गर्मी बहुत पड़ रही है, मुझे चंबे जाना है, घुमा लाओ प्लीज।
0: चंबे जाना है आपने?
1: ले चलो जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर लेके जाएंगे आपको चंबे। चंबा में बहुत गर्मी होती है, लेकिन
1: मैं हिमाचल में नहीं चंबा में गया नहीं।
0: बिल्कुल है, चंबा एक वैली है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है,
1: पर्वत के पीछे ही है ना जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आपने गाना भी सुना होगा ना महबूबा फिल्म का, पर्वत के पीछे चंबे का गांव। बिल्कुल सही है,
1: आपने महबूबा फिल्म बताई तो मुझे कॉलेज टाइम याद आ गया, मैंने 3 बार देखी थी महबूबा।
0: अच्छा,
1: तो सारे गीत,
0: तो जिन दो प्रेमियों की बात कर रहे हैं ना इस गाने में, उनका नाम है वहां के जो लोकल थे, कुंजू और चंचलो।
1: ओके, चलो इतना ज्ञान तो नहीं है मुझे आपसे मिलके ज्ञान की।
0: शायद आप भूल गए, मैंने नमस्ते इंडिया प्रोग्राम जब मैं करता था उसमें, तो उसमें मैंने आपको ये स्टोरी भी सुनाई थी उनकी, कुंजू और चंचलो की।
1: अब बुढ़े हो चले कपूर साहब, भूल जाते हैं।
0: और बताइए आजकल
1: सुन के आपके प्रोग्राम सुन के थोड़ी जवानी दोबारा आ जाती है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी जवानी इसी तरह से बरकरार रहे, हमारी ये दुआ है, और आप तंदुरुस्त रहें हमेशा ही।
1: सो काइंड ऑफ यू सर।
0: तो कौन सा गाना सुनाएं फिर?
1: महबूबा, पर्वत के पीछे चंबे दा गांव।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर महबूबा फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार रमेश जी।
0: कौन सा बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, डिंपल कश्यप बोल रहा हूँ जी, बराड़ा हरियाणा से।
0: डिंपल जी, एक ही फिल्म बची है, कौन सा गाना सुनवाएं उसका? प्रतिज्ञा का।
1: हाँ जी, प्रतिज्ञा का कोई सा भी गाना सुनाओ।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। आइए सुनते हैं प्रतिज्ञा फिल्म का ये गीत।
1: थैंक यू।

0: प्रतिज्ञा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो सिटी ब्यूटीफुल बोल दिया।
2: क्या मैं बोलूं?
3: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
0: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस धुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
5: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु

0: के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
4: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: साहिर लुधियानवी के बोलों को सुर में ढाला चित्र गुप्त ने, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे वासना फिल्म का ये गीत।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे।

0: हुक लाइन रखे, वो गाना करते करते हुक लाइन बनी तोड़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।
4: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना

रह जाएगा बाद मेरे ओ, अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा दीवाना सैकड़ों में।

0: हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई शंकर जय किशन ने। और श्रोताओं, इस गीत के पहले आपने संगम फिल्म का गीत सुना था, उस गीत में भी तर्ज थी शंकर जय किशन की। इस वक्त आप सुन रहे थे शिकार फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी का गाया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म फर्ज का गीत आपने सुना।
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल हो यूं ही चूलिया किसी ने,
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
3: जाने क्यों ना हम बाबा करते हैं।
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार न

0: नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: On the occasion of World Allergy Week, today we have Dr. Deepak Mahendru, consultant physician from Sureshta Hospital, Yamunanagar. Doctor, which are the signs and symptoms of allergy?
4: There are some simple signs like sneezing, coughing. Sometimes you, the rash erupts on the skin and running nose. So these are the main signs and symptoms of allergy, which are manifested with them when the patient is exposed to the allergens, to the particular allergens from which they have allergy, and the common household allergens are your dust, sunlight, excessive sunlight, and people have allergy to that. So when the patient gets exposed and they have these common symptoms which are have an common set, so these call your signs of allergy.
3: Issued in public interest by Sun Pharma.
1: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ के इंद्र से बोल रहे हैं, FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित होंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी होगा दिन में 2 बजे। 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे, आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। मनचाहे गीत होगा दिन में 3 बजे। नाट्य तरंग कार्यक्रम में बाद दोपहर 3:30 पर नाटक मृत्युहीन प्राण का

दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। निर्देशन किया है सुदर्शन कुमार ने। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में रीमा अमरापुरकर से यूनस खान की बातचीत का पहला भाग प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे होगा शाम 5:20 पर।

कार्यक्रम अमृत बाणी होगा शाम 6:30 पर, शाम 7 बजे विशेष जयमाला के अंतर्गत। आज सुनिए कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा। आज इस कार्यक्रम में महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुखे की शौर्य गाथा प्रसारित की जाएगी। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे वीएम आनंद की लिखी झलकी सुनिए मोटी मछली। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। कार्यक्रम चित्ररूप होगा रात 8:15। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेता टॉम आल्टर पर केंद्रित रहेगा। आप सुन रहे थे अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: FM 107.2 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: हरियाणा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा योग आयोग, आयुष विभाग और पंचकुला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, 16 देशों से आए छात्रों, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, हरियाणा पुलिस के जवानों, विभिन्न योग संस्थाओं, मूक बधिर बच्चों, दिव्यांगजनों, पंचों, सरपंचों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महाविद्यालयों, विद्यालयों, सभी विभागों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने योग दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये अवसर

0: पर भारत की उस सनातन चेतना का उत्सव है जिसने हजारों वर्षों से मानव मात्र को शरीर मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग दिखाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया और आयुष विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 7 योग संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया। हरियाणा के अन्य जिलों से भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। डिजिटल भारत निधि कोष के तहत दूरसंचार क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत BSNL को देश के ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में 1.5 करोड़ FTTH कनेक्शन देने का लक्ष्य दिया गया है। अम्बाला में दूरसंचार विभाग के महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीना ने बताया कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं को शहरी क्षेत्रों के समान गुणवत्तापूर्ण और स्थायी बनाना है।
1: हरियाणा में ये योजना एग्जीक्यूट हो रही है, अम्बाला में भी कार्य स्टार्ट होने का है और हमने 7 ब्लॉक थर्ड पार्टी को PIA को हैंडओवर कर चुके हैं और ये परियोजना पूरी तरह से 5 साल में इम्प्लीमेंट होगी। सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्र, दूरदराज के क्षेत्र इससे टेलीकॉम मीडिया से स्थायित्वता के साथ जुड़ जाएंगे। हमारे ग्राम के ग्रामीणों, ग्रामीण उपभोक्ता है, उनको विशेष फायदा यह होगा कि करीब 2500 से 3000 किसी भी FTTH कनेक्शन को लेने में प्रारंभिक खर्चा आता है, तो इस निधि के तहत उनको यह छूट दी जाएगी, इनिशियल खर्चा 0 आएगा।
0: श्री मीणा ने कहा कि इससे ग्राम पंचायतों को रिंग नेटवर्क से जुड़ने की परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि BSNL पहले ही इस योजना के तहत लगभग 20,000 कनेक्शन उपलब्ध करा चुका है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तिरंगा पार्क में मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। नागरिकों को अपने निर्वाचक नामावली विवरण के सत्यापन, अद्यतन के लिए प्रेरित करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम स्थल पर एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया, जहां मतदाता पंजीकरण, निर्वाचक नामावली में संशोधन तथा अन्य संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही SIR अभियान के उद्देश्य व महत्व से संबंधित सूचना पुस्तिकाएं वितरित की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जलंधर, हुण तुसी सुरजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। अज भारत ते दुनिया भर विच 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बढ़दी उम्र दे प्रभाव नूं रोकण लई योग विशे नाल मनाया जा रहा है। यह विशा सेहतमंद, सरगरम अते सम्मानजनक उम्र लई योग नूं जीवन भर दे अभ्यास वजों अपनाउण दी महत्ता नूं उजागर करदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता दे रेड रोड तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाउण विच देश दी अगवाई कीती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर के करिसन ग्राउंड में योग किया। पंजाब विच राज भर विच भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वख-वख सरकारी ते निजी संगठनों ते संस्थानों ने सवेरे योग सेशन कराए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन ने जलंधर नेड़े लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विखे योग सेशन विच हिस्सा लिया। उन्होंने राज के लोगों, खास करके नौजवानों, नशियों तो दूर रहने का सद्दा दिता। उन्होंने कहा कि आओ नशियां ना कहने लिए इकट्ठे होइए अते विकसित भारत के हिस्से वजो एक रोशन पंजाब बनाइए।
3: पंजाब निश्चित रूप से आज उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाकर वहाँ के युवा साथियों को NPU के अपने सभी संस्था के लोगों के साथ मनाया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब अपने भविष्य के लिए, पंजाब जिस प्रकार से अपने संघर्ष, अपने परिश्रम, अपनी मेहनत के लिए जाना जाता है और मैं मानता हूँ कि पंजाब के लोगों ने हमेशा संघर्ष करके अपना मुकाम पाया है, तो निश्चित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर ड्रग्स को नो कहेंगे और ड्रग्स की मादक को समाप्त करके समाज और युवा साथियों के बीच में निश्चित रूप से जो पंजाब, जहाँ पर विकसित भारत का सपना है, वही विकसित पंजाब बने, इस दिशा में आगे बढ़े।
2: सरहदी सुरक्षा बल ने अमृतसर विच अटारी वाघा सांझी चेक पोस्ट JCP, गुरदासपुर विच करतारपुर साहब कोरीडोर, फिरोजपुर विच CCP हुसैनीवाला ते फाजिलका सरहद ते JCP सादकी तो अलावा राज दीआं होर इकाईआं ते सदर मुकामां ते यह समागम कराया गया। प्रसिद्ध सांझी चेक पोस्ट अटारी विखे मुख मेहमान BSF पंजाब फ्रंटियर दे इंस्पैक्टर जनरल डॉ अतुल फुलसले ने सरहदी पिंड वासियों समेत हिस्सा लेने वालों को योग को अपने रोजाना की रूटीन में शामिल करने लिए उत्साहित किया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलदार सिंह संधवा ने राजकोट कपूरा के लाला राजपत राय पार्क विखे करवाए गए योग समागम विच

0: पुराना पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़। आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं धर्मात्मा फिल्म के गीत से, आवाजें हैं मुकेश और कंचन की। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं दो चोर फिल्म का गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीतकार हैं मजरूह, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मेला फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। शब्द रचना मजरूह की है, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: मेला फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: On the occasion of World Allergy Week, today we have Dr. Deepak Mahendru, Consultant Physician from Sureshka Hospital, Yamunanagar. Doctor, which are the signs and symptoms of allergy?
2: There are some simple signs like sneezing, coughing. Sometimes the rash erupts on the skin and running nose. So these are the main signs and symptoms of allergy, which are manifested with when the patient is exposed to the allergens, to the particular allergens from which they have allergy, and the common household allergens are your dust, sunlight, excessive sunlight, and people have allergy to that. So when the patient gets exposed and they have these common symptoms, which are, as I already said, so these call your signs of allergy.
1: Issued in public interest by Sun Pharma.
3: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
4: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
4: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
3: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
4: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
3: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
5: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें, जनहित में जारी।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राजपूत से। राजेश खन्ना और जो दुल्हन थी वो नज़र आती हैं हेमा मालिनी। श्रोताओं, और इसका जवाब भी हमारे श्रोताओं ने खूब दिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये जून का महीना गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना, ऐसे में विविध भारती के सुरीले सफर जैसे प्रोग्राम मन को तसल्ली देता है। आज इबारत पढ़ते हुए हमारे राजस्थान के टूर की याद आई। रेगिस्तान राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी महसूस हुई, लेकिन हम दिसंबर महीने में गए थे इसलिए ठंडी उतनी ही थी जितनी गर्मी के दिनों में गर्म हवा होती है। पीतल की मोरी गागरी और मंगवा दे, और पीतल की मेरी मंगवा दे कहकर हमने वहाँ के लोकल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाए। जहाँ लोकल ड्रेस, जहाँ की भी हम घूमने जाते हैं वहाँ की तो होती है, तो इसकी अगर कोई यादें आपके पास हो तो आप हमसे बांट सकते हैं। वैसे हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि चेतक कविता क्या आपने पढ़ी है, तो इस बारे में हमें ज़रूर लिखें और चेतक कौन था। एक और श्रोता लिखते हैं, बींद इबारत में एक शब्द है, बींद मतलब राजस्थानी में दूल्हा। जी हाँ, और बींदनी बोलते हैं दुल्हन को। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज सुरीला सफर में राजस्थानी छटा के बिखेरेंगी रंग, यहाँ की संस्कृति, पहनावा, खान पान बहुत ही शानदार है। महिलाएं आज भी हाथों में सफ़ेद चूड़ियाँ पहनती हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती हैं। जब खुदाई हुई तो कई साक्ष्य मिले जो अब भी राजस्थान में मौजूद हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है राजस्थान की संस्कृति कितनी।

0: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: लाख की चूड़ियां कहाँ मिलती हैं राजस्थान में, ये आपको बताना है। और झीलों की नगरी के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो राजस्थान में उदयपुर कहा जाता है। लेक सिटी पैलेस, ऐतिहासिक इमारतें, जग मंदिर और तमाम चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। और छतरी के बारे में आपको बताना है, और कठपुतली जो होती है यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध होती है। तो कठपुतली की जब हम बात करते हैं, तो सबसे प्रसिद्ध जो भारत की कठपुतलियों के नाम हैं वो आपको बताने हैं। और चेतक के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्षमा चाहूंगी, चेतक की वीरता कविता श्याम नारायण पांडे की है, मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा था, कोई बात नहीं। लेकिन चेतक के बारे में तो सभी जानते हैं और हमने भी सबने कविता पढ़ी है। चेतक महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे, इस बारे में लिखा है हमारे श्रोता ने। और हल्दी घाटी का युद्ध तो सभी को याद होगा, सबने पढ़ा होगा इस बारे में। तो चेतक की वीरता का क्या कहना। एक श्रोता लिखते हैं कि हमने चेतक कविता पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी का घोड़ा जिसका नाम चेतक है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा, तो रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस तरह की ये कविता थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। एक और श्रोता लिखती हैं कि सूरत मेरे फ्लैट के सामने तपती नदी बहती है, सर्दियों में खास करके वहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं, 4 महीना बसेरा करते हैं, हमें ये नज़ारा देखने का मौका हर रोज मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर के बीच स्थित है, जो दुर्लभ जीवों जैसे चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है। जैसलमेर के सैम और खुरी के टीले डेरा डालने और ऊंट सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सफारी की कुछ यादें हो तो आप जरूर लिखिए हमें श्रोता। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था।
0: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या कर

0: करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक PLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

हेमा मालिनी और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म से। वैसे इस गीत की शूटिंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान के रेतीले इलाकों में शूट हुई ये पहली फिल्म मानी जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जोधपुर कभी जाएं तो बिना रस के गुलाब जामुन जरूर खाएं, तो ये तो नई बात पता चली है। और पीतल की मोरी गागरी इस गीत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सुनीला सफर राजस्थान में हम जो है वो घूमने जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने कुछ फादर्स डे के बारे में लिखा है। जी हाँ, फादर्स डे की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज फादर्स डे के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखती है, चेतक कविता स्कूल टाइम में पढ़ी है। चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही साहसी और फुर्तीला। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। और अगर बोलना शुरू करें शायद अभी तो आधी ही याद होगी इन्हें। और एक और श्रोता लिखते हैं कि रेगिस्तान की मखमली रात में चांद जब रेत पर उतरती है तो केसरिया रंग में रंगा राजस्थान अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने आ जाता है। और मेले की रौनक, चुनर के रंग, महल, अटारियां सबके बारे में इन्होंने लिखा है। और हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि मीना बाजार कहाँ लगता है राजस्थान में। जी हाँ, जयपुर में लगता है। और दो कठपुतलियों के बारे में हमने आपसे पूछा था जो राजस्थान की तो नहीं मानी जाती है लेकिन राजस्थान कठपुतलियों के लिए बहुत ही मशहूर है। और इस रिवाज को, इस परंपरा को हम सबको बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भारतीय कलाकारों की जो कलाकारी है बड़ी ही कम अब देखने में आती है। और कठपुतलियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे जयपुर में लगता है मीना बाजार।

सैफी आजमी का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में दो बूंद पानी फिल्म से, जो सिमी ग्रेवाल और सिखियों पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर कई ऐतिहासिक छत्रियां, स्मारकी गुंबद मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान की कला संस्कृति में शेखावाटी की सबसे बड़ी छत्री सीकर जिले रामगढ़ में है माना जाता है। इसे सेठ रामगोपाल पोद्दार की छत्री के नाम से जाना जाता है। पंचकुला की छत्रियां जो है वो बड़ी ही प्रसिद्ध है। श्रोताओं, आप इसके बारे में भी जरूर देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी छत्री है और राजस्थान की सबसे बड़ी छत्रियों में मानी जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक कविता मैंने पढ़ी है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत शूरवीर बहादुर योद्धा थे वो। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप युद्ध में थे तो चेतक खुद गंभीर रूप से घायल था। तब उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए बहुत गहरी खाई में छलांग लगाई थी। एक और श्रोता का ने लिखा है कि इन्होंने लिखा है पुष्कर मेले के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में हमने आपसे पूछा भी था। पुष्कर का मेला लगता है और ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ, और ये मेला बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जहाँ तक नमक के रेगिस्तान की बात हमने आपसे पूछी थी, कच्छ की रण जो गुजरात की तरफ है, वो नमक का रेगिस्तान बड़ा ही सुंदर है। खासकर अगर इस जगह को आप चांदनी रात में देखेंगे तो आपको बड़ा ही अलग अनुभव होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने आपसे पूछा था। जी हाँ, थार का रेगिस्तान जो है राजस्थान से शुरू होता है और बहुत गुजरात, पंजाब और आगे भी फैला हुआ है। तो ये बड़ी ही सुंदर बातें हैं। और गुलाबो और शिताबो ये दो कठपुतलियां हैं। आप इनके बारे में जानते हैं तो हमें लिखें कहाँ की ये कठपुतलियां हैं।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना, मधुमति और हेलन का नृत्य बड़ा ही खूबसूरत इस गीत में नजर आता है श्रोताओं। और माउंट आबू जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, यहाँ एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप जानते ही होंगे दिलवाड़ा टेंपल। क्या आपने ये टेंपल मंदिर देखा है तो आप यहाँ की कलाकारी के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो तो कलाकारियों का शहर या प्रांत ही माना जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सांभर झील के बारे में लिखा है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो मुख्य रूप से जयपुर और नागौर जिले की सीमा अजमेर के निकट पर स्थित है। और भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने यहाँ के सुंदर पंछियों के बारे में लिखा हुआ है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में मीना बाजार मुख्य रूप से जयपुर में आमेर के किले के बाहर और वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसे बड़े मॉल्स में स्थायी बाजार के रूप में मौजूद है। इसके अलावा राज्य भर में लगने वाले त्योहारों मेलों के दौरान समय समय पर विशेष अस्थायी मीना बाजार भी लगाए जाते हैं। यहाँ एक और इमारत है श्रोताओं, इस इमारत के नाम पर विविध भारती का एक कार्यक्रम भी है, क्या आप बता सकते हैं?

योग भारत की प्राचीन संस्कृति की एक अनमोल देन, जिसे भारत ने नहीं आज पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। इसे कई सारे नए नए नाम दे दिए गए हैं और उन नए नामों के साथ भी योग अखिल विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। योग को कई लोग योगा भी कह देते हैं, परंतु योग तो योग है जो संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ना किसे? हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को और हमारे प्रत्येक अंग को अपने आप से एक दूसरे से जोड़ देना, यही युज है। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो युज का अर्थ होता है जोड़ना। आपको आपके आध्यात्म से जोड़ देना ही योग है, और योग मनुष्य की प्रकृति और आत्मा को एक साथ जोड़ देता है। भाग दौड़ भरा जीवन है और इस जीवन में योग का महत्व अद्भुत है। योग के सूत्रों को मुख्य रूप से योग सूत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। इस योग सूत्र में 195 सूत्र हैं, जिनमें योग के नियम, साधना, ध्यान और जीवन में संतुलित बनाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें अष्टांग योग का वर्णन भी मिलता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,

योग का इतिहास सहस्त्रों वर्ष पुराना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, भागवत गीता में योग का उल्लेख मिलता है। पहले योग का उपयोग ऋषि मुनि मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करते थे। धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रचार हुआ और आजकल लोग योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। योग करने के अनेकों लाभ हैं। इससे शरीर स्वस्थ हो जाता है और लचीला बन जाता है। नियमित योग करने से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। योग रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी कई सारी समस्याओं को नियंत्रित करने में भी योग मदद करता है। योग से कई सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। अब योग से हम किन किन बीमारियों से या किन किन समस्याओं से बच सकते हैं या उनमें लाभ मिलता है, उनमें से कुछ अगर कही जाए तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, तनाव, चिंता, अनिद्रा, पीठ दर्द, गठिया, अस्थमा, पाचन संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से योग हमें बचा लेता है।

योग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मन को शांत करता है और शरीर को लचीला बनाता है। आज के काल में सभी मानसिक परेशानियों से भी उलझे हुए हैं। हर रोज एक नई समस्या समक्ष आन खड़ी होती है और अगर हम योग की साधना करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त अपने आप शांत हो जाता है और कई सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, जिससे हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट यानी हम अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं और बहुत सरलता से कई बड़ी बड़ी परेशानियों को निपटा सकते हैं। हालांकि कई सारी बड़ी बड़ी गंभीर रोगों के लिए कहा जाता है कि केवल योग पर निर्भर ना करें, परंतु डॉक्टर की सलाह, उचित इलाज के साथ अगर योग किया जाए तो लाभ अधिक मिलता है। विद्यार्थियों के लिए तो योग अति आवश्यक है, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग हमें स्वस्थ, अनुशासित, सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, इसलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो कौन कौन करेगा योग, आज से विचार कीजिए, योग में जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपकी धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन के प्रत्येक क्षण को बहुत सरलता से जीने की राह देता है। योग रोग निरोध करता है।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और

0: समस्त विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
2: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकित आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS धुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
4: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है। नई कनेक्टिविटी बना रहा है। मल्टी

0: की मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है।

0: विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

शरद भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढला उपेन अय्यर ने आशा भोसले का गाया सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत से पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया सूरज फिल्म का नगमा। हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज थी, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रही हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

परायधन फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और गीतकार आनंद बख्शी।

0: तीन देवियां फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, एसडी बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और इस गीत के पहले श्रोताओं परख फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। सदाबहार नवमी कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम में। कहीं धूप खिली है श्रोताओ, कहीं बादलों के डेरे हैं। दोपहर के इस समय कहीं आराम और गपशप, तो कहीं कुछ कामकाज की मसरूफियत। तो चलिए आपके बीच विविध भारती के गीतों का ये अफसाना जरा हम भी छेड़ देते हैं। देखिए मन चाहे गीत कार्यक्रम का ये गीत कहीं आपकी पसंद का गीत तो नहीं? सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। और इस गीत की पसंद भेजी हमारे पास रायगढ़ खानापुर रायगढ़ से श्री प्रमोद पाटिल, श्रीमती ज्योति पाटिल, योगेश कुलकर्णी, शर्मिला महात्री इसी गीत को सुनना चाहते थे, अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी, ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ से। और तिलहारा महाराष्ट्र से उर्वी बेन, नायाब बेन, प्रीति बेन, मनाली निधि सीजल की ये फरमाइश थी।

गीता आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज थी, आन बख्शी के बोल थे। इस गीत की पसंद भेजी राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभू दयाल खटक ने, और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर की ये फरमाइश थी।

खिलौना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोता इस गीत की पसंद की कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। इसी गीत को सुनना चाह भी कनेर से कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी।

तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं, क्या जीना और क्या मर जाना, ऐसा होता है याराना। अरे छोड़ी यारों ने दुनिया पर यार।

0: अपने मुजोर है,
1: धीरा छोड़ न देना हंस के,
0: रखना दोस्त लगा में कस के।

सब कुछ आधा आधा है तो अरे रानी माँ से मुझको

धर्मवीर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, इस गीत को पसंद किया भाटापारा से, छत्तीसगढ़ भाटापारा से गणनलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम, छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्बल देवांगन और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार, नसीम परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा, हिना कौसल, सितारा और इस गीत की फरमाइश की जालंधर से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है मन चाहेगी।

गीत है शतावली और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू सूर्यकांत राकेश साहू शुभम और सावित्री साहू।

इसी गीत को सुनना चाह शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरसी, नईम इदरसी, नदीम इदरसी ने, और इसी गीत के लिए सादुर शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान की फरमाइश आई। और इसी गीत को सुनना चाहते थे बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज, विकास सक्सेना और चंचला कश्यप, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यही संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को और भेजते रहिए पत्र मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
2: जुडू।
3: यस सर।
2: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
3: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
2: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
3: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
2: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज तो अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
3: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं, कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही। बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
2: खून के साथ साथ दांतें भी निकालनी होगी। इट्स मस्ट, कमिश्नर साहब का हुक्म है। चलो एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं।
3: यस सर।

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाला, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला, वाह बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है क्यों, यू ब्लैकी रास्कल।

0: उस सांप को हम जॉन्सबर्ग पेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़िया डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
2: 100% अन्याय है।
0: जुडो, इस तरह काम नहीं चलेगा। इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता।
2: यस सर।
0: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मुलेज। नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आग की तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर तबाह कर रखी जाएंगी। कुचला जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा।
1: आप लोग खुद को शिष्ट समझते हैं, शिष्टाचार का दम भरते हैं, लेकिन लेकिन जी, जंगल के पशु भी शर्माते हैं आप लोगों के व्यवहार से।
2: सर, मैं रेडी हूं।
0: ठीक, देन स्टार्ट।
2: कहिए, फिलिप्स का खून किसने किया? बताइए, कब खून किया, कहां किया?
1: नहीं मालूम, नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम, नहीं मालूम।
0: बोलिए, बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना। ये तो बेहोश हो गया। लगता है सहन शक्ति बहुत ही कम है। होश मिलाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे।

0: ना ना जिनी, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गरम करके लाती हूँ।
0: जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते होंगे। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेस, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीखचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
2: हम लोग तो कानून के गुलाम हैं मिसेस मलेस।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए है।
2: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं?
2: सुन रहे हो जुडू, मिसेस मोलाइज क्या फरमा रही है?
3: हाँ सर, सुन रहा हूँ।
4: अच्छा मान लीजिए अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलाइज?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
3: सर लगता

0: है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
1: अरे वो तो करेगा ही जुड़ू, मैं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा।
2: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
1: यस हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था।
2: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
1: बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं, खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
2: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
3: मौसी, दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
2: नहीं नहीं, आऊंगी थोड़ी देर बाद।
1: ये कौन बोले, किसी युवती की आवाज लगती है।
2: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
1: जरा उसे बुलाइए।
2: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
1: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए आप जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
3: ये लीजिए, मैं आ गई, देखिए।
1: क्या नाम है तुम्हारा?
3: जिनी पैराम्बा।
1: क्या करती हो?
3: कॉलेज में पढ़ती हूँ।
0: सर, लगता है इसे कहीं देखा है।
3: कहीं सड़क, बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
0: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
1: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी।
0: हाँ, वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी। क्यों, गई थी ना?
1: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो। अच्छा, तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी।
3: जी हाँ, चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
1: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
3: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
3: जी, मेरी? अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
1: प्लीज मिसेस मोलायस, जिनी तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
3: कहना क्या चाहते हैं?
1: मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये चाहता हूं सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ मेरे साथ आओ।
3: नहीं, वो क्यों जाएगी?
1: ओहो, डरने की कोई बात नहीं है।
3: मैं कहां जाऊंगी?
0: मेरे साथ?
3: नहीं
0: सर, मैं ये कह रहा हूं।
1: जिडू, फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ, देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
2: नहीं, वो नहीं जाएगी। जिनी, तुम अंदर जाओ।
1: नहीं, वो मेरे साथ ही जाएगी।
0: सर, मैं कह रहा था कि
1: जिडू,
4: यस सर,
1: समस्ती पकड़ के ले चलो इसे।
3: नहीं,
1: इट्स माय ऑर्डर।
3: मौसी, नहीं, छोड़ दो मुझे।

तपता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओं के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस, रंग भेद के कुत्सित लिए विचार मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। माओं के कोमल अंशों को नोच,

0: खून सनी है इनकी पैनी चोंच, इन सफेद गिद्धों के दल छाए मन की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं, लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेस?
0: कौन? ओह नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर

0: अरे बन जाए जयमाल, लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं। लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेस?
0: कौन? ओह नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। हाँ,
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है? जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलाज? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए जिनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: जिनी?
1: जी हाँ, जिनी आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं? धन्यवाद
1: मिस्टर मोलाय। आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दो।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, 4 नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: कौन? जिनी? ये जिनी को यहाँ क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहाँ?
1: तुम कैसे हो बेंच?
0: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूँ जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
1: बेंच, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं।
0: इसे यहाँ क्यों लाए हैं? कहिए, कहिए क्यों लाए हैं इसे यहाँ?
2: फिलिप स्लेपी का खून किसने किया?
0: नहीं मालूम।
2: आपने नहीं किया, इसका मुझे यकीन है। लेकिन दल में कौन कौन थे ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस उतना ही बता दीजिए।
1: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है।
0: जी,
2: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहीं से भी चलेगा।
1: बेंच, ओ बेंच,
0: जी,
1: बचाओ।
0: जी,
1: बेंच,
0: जी,
1: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
0: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी का क्या कसूर है? उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उसे क्यों लेकर आए हैं बताइए।
2: सिर्फ लेकर ही नहीं आए,
3: अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है।
1: हाँ,
2: बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वह कौन कौन थे? कहिए, बोलिए।
0: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं।

0: Mr. Thompson? Mr. Thompson! जितने भी सताना हो मुझे सताइए पर उसे छोड़ दीजिए।
1: सॉरी मिस्टर मनाइज, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी की वजह से
0: मिस्टर थॉमसन,
1: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
0: मिस्टर थॉमसन, मिस्टर थॉमसन, थॉमसन!

0: taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law.
1: दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेस, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलेस?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं, वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलेस, अपनी राय बदल कर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद, आपको और कोई जरूरी बात न करनी हो तो आप जा सकते हैं।

0: दंडित कवि की मां ने प्रेटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सजा को माफ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।
1: वो इंसान नहीं है जी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास, कोई चीज उन्हें नहीं छूती।
2: ने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता।
1: उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी, ना इंसाफी और झूठ। उनके कानून है, उनके औजार है।
2: ओ बेंच, तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंच?
1: कब कब?

मुझे गर्व है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरव मंडित, जितना जीवन मैंने भोगा मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने क्रुद्ध रक्त से तिलक किया है, बंदी गृह की लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर,

मुझे मिला था मात्र एक जीवन जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को।

18 अक्टूबर 1985 को सारे विश्व के जनमत को ठुकराकर जोहान्सबर्ग के केंद्रीय कारागार में स्वाधीनता संग्राम के सिपाही रंगभेद नीति का विरोध करने वाले कवि बेंजामिन मोलहेस के प्राण दंड के आदेश को क्रियान्वित किया गया।

0: Będzie, Mariu, będzie! Będzie, będzie, będzie! Aplog mire bench ko sirf ek baar dekhne do, sirf ek baar dekhne do.
1: Hame afsos hai Mrs. Mulay, sab kuch khatm ho chuka hai. Benjamin ab sirf ek lash par hai.
0: Khatm ho gaya, sab kuch khatm ho gaya. ठीक है तो फिर उसका निस्तेज ठंडा शरीर ही मुझे दे दो. मैं केवल एक बार देखूंगी उसे, सिर्फ एक बार देखूंगी.
1: सचमुच मैं बहुत दुखी. लाश देने का ऑर्डर नहीं
0: है. ऑर्डर नहीं है साहब, मैं उसकी माँ हूँ. माँ, वो मेरा खून है. उसे 28 सालों तक मैंने पाला पोसा है. मैं माँ होकर अपने मरे बेटे का मुंह तक नहीं देख सकती साहब.
1: Really? We are sorry.
0: बेंजी अपनी कविता की कापियां भी तू लेता जा बेंजी, ये सारी कापियां लेता जा, ये ले सब ले जा.
2: मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का. मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की.

मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन

0: का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान, और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के, और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
2: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी दो शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी, और सबसे जरूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है,
1: परभणी में।
2: तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था, और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
1: ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
2: और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है, मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे, और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब

0: तो ठीक ही बात है।
1: वाह वाह वाह, ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो।
0: हाँ तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, उनके दिमाग में 2400 घंटे वही चलता था। और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े। लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था। तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी। और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गई, तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया, थिएटर ही चलता रहा।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्यानगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी, उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वहां पर जॉब करती थी, तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: मन का जियो,
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ अपने बच्चों को, हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी 2 बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी, हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी। और पापा का ऐसा था, वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड,
0: हाँ। और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया SSC ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ उस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफ कोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, विशेषतः मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझमें क्या है, शायद मुझमें कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है,
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से।
1: कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो उनके रास्ते एक साथ हुए,
0: राइट,
1: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है, वो कोई एक मोमेंट था जहाँ ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला साम जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी।
1: पहला कदम उनकी तरफ से नहीं आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे

0: याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया। लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह।
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या तो, प्यारी बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ, ओके। तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं।
0: ओके।
1: मतलब उतना सा, खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी है।
0: हाँ, सवाल आता है कि ये आखिर क्या है,
1: क्या है, राइट। सो श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं, वहां फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है, तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने,

0: मैं अभी जा ही रही हूँ, तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है। और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियाँ पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया, वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया।
1: वाह,
0: तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है। ओके,
1: वाह वाह
0: सो
1: वाह,
0: बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला और दादा दादी, मतलब उनके सास ससुर, बुआ, पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई एट द एज ऑफ 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी
1: वाह,
0: ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा ने भी, पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है वो उस विश्वास की वजह से है।
1: बहुत ही सुंदर घटना है ये, जो किताब के नाम की घटना है और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है, ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे,
0: सही बात,
1: क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी।
0: राइट,
1: चूंकि बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
0: राइट, सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं।
1: जी,
0: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी अणि बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी, ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी, तो पति पत्नी का कैरेक्टर था ये, इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल। तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
1: बहुत सही,
0: ठीक है,
1: बहुत ही सही।
0: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई, तो माइक नहीं थे, तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कंपटीशन में वो थी, तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के ऊपर।
1: वाह वाह, क्या प्रयोग,
0: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूं प्ले के लिए। जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग

0: अलग शहरों में गांव में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं।
1: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो निर्देशक भी थे, राइट। सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे, जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखरे का राजा जी, ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकायची, ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है, पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने विकायची अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसका भी खूब जिक्र मिलता है, कि अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
1: किया है,
0: कामयाबी।
1: काही स्वप्ने विकायची ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था, तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं, और उस वक्त पापा की उम्र थी 23-24 ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है, और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था
0: और पापा के निर्देशन में।
1: एग्जैक्टली, तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है, और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग होती है और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय, और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है।
0: अब उस दौर की बात करें जब टेलीविजन उस तरह से नहीं आया था और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती
1: है। करेक्ट करेक्ट, तो ये प्ले था। उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था, पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा, पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट। तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरड़े

0: फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था.
1: गजब.
0: इट वाज हिज लॉन्च. तो और वो प्ले बहुत चला बिकॉज इट वाज अ आउट एंड आउट कॉमेडी और बहुत मजा आया लोगों को. और एक लक्ष्मीकांत बेर्डे जैसा कलाकार आया. पापा थे, लक्ष्मीकांत बेर्डे थे, तो इट वाज पिक्ड अप लाइक हाउ. उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे 5-6 बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे. और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले. और दैट वाज अ हिस्टोरिकल प्ले. मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निहलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था, बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी. तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है, ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो. तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की.
1: वाह.
0: ओके. और फिर उसके बाद तो इट इज जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है. उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए. तो थिएटर वो करते रहे पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे.
1: बिल्कुल.
0: तो इसलिए वो हैंड्स अप ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हैंड्स अप का ये मजेदार किस्सा है. उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी. तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के. तो और उस वक्त जैसे अब है मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था. आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. पापा के पास उस वक्त एक टू व्हीलर थी. तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था. और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बंबई में.
1: हाँ जी.
0: तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके. और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा, तो सॉरी सॉरी सर करके. तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं, कि वो उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस. और
1: क्या प्यारी बात है. वाह. यहां भी गाने की जगह बन रही है और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर.
0: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है मेरे महबूब में क्या नहीं.
1: वाह वाह वाह. क्या बात क्या बात क्या बात. सुनते हैं ये गाना.

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर, और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ।
1: ओके, तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे, ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अउचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देयर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो।
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली, तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे।
0: किस इलाके में?
1: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने, बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था, तो उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था, और दो साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे, उन्होंने वो लेटर देखा और एक मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था कलाकारों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
0: उसकी बात आगे।

0: उसके
1: करेंगे।
0: आगे करेंगे। पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे,
1: बिल्कुल
0: रामा शेट्टी छा गया था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो, तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है।
1: बिल्कुल। एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
0: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे। पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं, राइट।
1: बिल्कुल
0: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से। और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है।

0: भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं,
1: बिल्कुल.
0: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से. और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है. तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला. और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे. हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्स अप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था. तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा. तो उन्होंने कहा था, तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो, दैट डज नॉट मैटर. ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत. तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड.
1: बिल्कुल बिल्कुल. एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे साबित किया जा सकता है. उसकी मिसाल है अर्धसत्य. हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया.
0: राइट.
1: लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी.
0: नहीं थी
1: तो पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी, वो कैसे मिली, उसका जिक्र कीजिए.
0: वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी
1: जी.
0: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके, और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे. तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था, और पापा उस वक्त एकदम पतले दुबले पतले से ऐसे थे. तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त. तो आप करोगे, उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम, चलो. मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं, तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने वो किया था. तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त. जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त. और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया, तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ, इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूँ फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, यथा लोकमान्य टिळक हा रामोश्या सारखा दिसतो. रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिस में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई. तो इस तरह से वो दिखता है. तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था, लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी, ही वॉज वेरी वेल बिल्ट.
1: यस.
0: तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था. ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो वो कहते थे, मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है. बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त. और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार, जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई. आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच.
1: बिल्कुल. राज से स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके लिए. और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया है कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया. वो क्यों है?
0: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है. 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में. अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, अलकाजी सर जिन्होंने NSD जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना, उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था. और उस समय ना पापा और

0: 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो. ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी. तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ.
1: जो कसर रह गई
0: जो कसर रह गई है वो पूरी करनी है. अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा.
1: yes.
0: मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी. अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था. उस वक्त 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था. तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था. पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था 1 महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे. बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है. एग्जैक्टली. तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकालकर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं.
1: ओके.
0: हाँ,
1: क्योंकि कोई रास्ता नहीं था.
0: एग्जैक्टली. पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूं. तो ही वाज वेरी वेरी इन्वॉल्वड इन द स्क्रिप्ट. और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वाज अ वोरेशियस रीडर. मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था. तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था. इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा. और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राज से स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है. वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से. तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है.
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं.
0: हाँ?
1: और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है. खोज कर अगर आप देखें. हाँ? तो वेव्स पर शायद ये अभी भी उपलब्ध है.
0: तो वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी.
1: उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो बताइए कि कौन सा गाना यहाँ आना चाहिए?
0: यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है वो था राजी फिल्म का ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू.
1: क्या बात है, मुजा साहब के बोल.
0: ऑफ कोर्स
1: सुनते हैं ये गाना.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पुराना पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं सैनिक फिल्म का ये गाना, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजें हैं, संगीत है नदीम श्रवण का और बोल हैं समीर के।

हेलो दोस्तों, लम्हे पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। टुडे विल टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड अ कम्युनिटी। अपना स्वयं का समुदाय कैसे बनाएं? कहां से शुरू करें? कम्युनिटी एक समुदाय केंद्रित इवेंट प्लेटफॉर्म है जो आपके समुदाय को बढ़ाना, कार्यक्रमों का आयोजन करने और संचार को बढ़ावा देने के लिए है। सरल शब्दों में, समुदाय एक ऐसा समूह है जो विभिन्न स्थानों, अनुभवों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को एक साथ लाता है तथा वे या तो किसी विशिष्ट साझा समस्या की दिशा में काम करते हैं या किसी साझा उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करते हैं। हालांकि इस परिभाषा में एक कमी है, यह इस बारे में कुछ नहीं कहता है कि एक ही चुनौती के लिए कितने अलग अलग समूह या सभाएं होनी चाहिए। आदर्श रूप से आपको उसी चुनौती के लिए एक नया समुदाय तभी विकसित करना चाहिए जब ऐसे मौजूद समुदाय पहुंच से बाहर है। कई क्षेत्रीय समुदाय इस तरह से बनाए गए थे जो अभी भी आभासी उपकरणों के कारण सहयोग देखते हैं। इस प्रकार भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए एक सकारात्मक सीखने का अनुभव और विकास सक्षम करते हैं। समुदाय बनाने का विचार बहुत ज्यादा काम जैसा लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। यदि आप पहले से योजना बनाते हैं, अपना समय लगाते हैं, जो करते हैं उसमें निरंतरता बनाए रखते हैं और कुछ बुनियादी चरण का पालन करते हैं तो आप आसानी से अपना समुदाय शुरू कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस पर काम करें। अपने समुदाय के लिए एक स्पष्ट और विशिष्ट पहचान निर्दिष्ट करें। आपने पहले ही तय कर लिया है कि आपका समुदाय किस बारे में होगा, लेकिन सही लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको संक्षेप में परिभाषित करना चाहिए कि विषय, मुख्य विषय क्या है और उन्हें एक साथ क्या लाएगा। लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि आपके समुदाय से क्या अपेक्षा करनी है। समान लक्ष्यों वाले सदस्यों को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है ताकि वे अधिक सहज महसूस करें और समुदाय के साथ जुड़े। इस तरह वे शामिल होने के लिए अधिक उत्सुक होंगे, जो समुदाय के बढ़ने और टिके रहने के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, आप पशु प्रेमियों या कला प्रेमियों के लिए एक समुदाय बना सकते हैं। यदि आप एक आउटडोर व्यक्ति हैं, तो आप गतिविधियों के लिए प्राकृतिक के प्रति उत्साह लोगों को एक साथ ला सकते हैं। शोक और मनोरंजन के अलावा आप व्यवसायों के बारे में कुछ बना सकते हैं ताकि लोग विशिष्ट विषय पर खुद को बेहतर बना सकते हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि गतिविधियां और विषय समुदाय की पहचान से मेल खाते हैं। उन मुख्य गतिविधियों की पहचान करें जिन्हें आप समुदाय के साथ आयोजित करना चाहते हैं। समुदाय नेटवर्किंग और आत्म सुधार के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस मामले में गतिविधियों का आयोजन और आयोजन करना समुदाय प्रबंधन के सबसे बुनियादी हिस्से हैं। जब आप योजना बना रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे समुदाय के लिए कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त है। क्या यह एक बड़ा सम्मेलन है या एक छोटा मीटअप? क्या ये साप्ताहिक सभाएं हैं या मासिक कार्यक्रम? क्या आपको उन्हें ऑनलाइन होस्ट करना चाहिए या भौतिक कार्यक्रम आपकी भीड़ के लिए बेहतर है? आपके समुदाय की जरूरतों को जानें और उसके अनुसार कार्य करें ताकि आप लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके और उन्हें समुदाय का सक्रिय हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसी प्लेटफॉर्म चुनें जिसमें आपकी नियोजित गतिविधियों के लिए सभी उपकरण मौजूद है ताकि आपको बाहरी सेवाओं की आवश्यकता न पड़े। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedback

amc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla, spice.lamhe.vanilla। जब समुदाय प्रबंधन की बात आती है तो आपके द्वारा चुने गए प्लेटफॉर्म गेम चेंजर होता है। आपके पास सभी आवश्यक उपकरण होने से आपका समय बचेगा, आप हमेशा अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और आपकी संगठन प्रक्रिया आसान हो जाएंगी। आपके समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से कुछ घोषणा उपकरण और संचार चैनल है। यदि आप सदस्यों के साथ स्थिर और सुचारू संचार बनाए नहीं रख सकते हैं तो आप अपने समुदाय की अखंडता को बनाए नहीं रख सकते हैं। सारांश और सामुदायिक समाचार के लिए ईमेल, आपके सदस्यों के बीच आंतरिक व्यक्तिगत संचार के लिए डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं तथा लोगों को बातचीत में शामिल करने के लिए आप जूम कॉल्स भी ले सकते हैं। कभी कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी आप उनसे बात कर सकते हैं, अगर फिजिकली मिलना आपके लिए अगर इतना आसान नहीं होता है तो। अगर लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है तो वो किसी चीजों में दिलचस्पी नहीं ले सकते हैं। अपने सदस्यों को हमेशा अपडेट रखें, उनसे बातचीत करें और उन्हें खबरों के बारे में बताएं। लोगों को एकत्रित करके परस्पर संवाद को प्रोत्साहित करें। एक सक्रिय समुदाय ही लोगों को एक साथ जोड़ता है, जैसे कि पहले बताए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को लगे कि वे भीड़ का हिस्सा है तो अपने समुदाय के लिए कार्यक्रम आयोजित करना आपकी मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। जब लोग एक साथ महत्वपूर्ण समय बिताते हैं तो वो आसानी से जुड़ पाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। लोगों को एक साथ लाना एक सामुदायिक नेता के रूप में आपके मुख्य लक्ष्यों में से एक होना चाहिए। अगर आपका सामुदायिक प्लेटफॉर्म आपको इवेंट शेड्यूल, RSVP, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ईमेल अपडेट और रिमाइंडर, चित्र अपलोड और बहुत कुछ जैसे सही संगठनात्मक उपकरण प्रदान कर सकता है तो भौतिक या वर्चुअल इवेंट आयोजित करना कभी भी मुश्किल नहीं होता है। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार किए गए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म की तुलना देखें दोस्तों, जो भी हो, इफ यू आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, आराम से कीजिए। इस बारे में तनाव न ले कि ये कैसा होगा। समुदाय बनाना जरूरी नहीं है कि गंभीर और जटिल हो। ये नए लोगों से मिलने और अच्छा समय बिताने के लिए एक आकस्मिक मंच हो सकता है। आपको बहुत अधिक सोचने या योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपना समय ले, प्रेरणा के लिए अन्य समुदायों को ब्राउज करें और प्रवाह के साथ चले, गो विद द ट्रेंड। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla, spice.lamhe.vanilla। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: शाम सवानी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर ट्राइसिटी को गौरवान्वित किया है। लगभग 62 वर्ष की उम्र में इन्होंने लेह से मनाली तक का कठिन पहाड़ी सफर मात्र 48 घंटे में साइकिल से पूरा कर ये अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। एक सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी है, एक पर्यावरण प्रेमी, फिटनेस प्रेमी और एक समर्पित साइक्लिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं श्री आलोक भंडारी की। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम शाम सुहानी में।
1: नमस्कार जी सबको।
0: सबसे पहले तो आलोक जी, आपको बहुत बहुत बधाई। 48 घंटे में आपने लेह से मनाली तक का साइकिल पर जो सफर पूरा किया,
1: धन्यवाद।
0: क्योंकि आप वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट डायरेक्टोरेट से रिटायर्ड हैं, तो आपकी इस विभाग में सेवा का सफर कब शुरू हुआ और आपका इस विभाग में सेवा का अनुभव कैसा रहा?
1: मैंने 1986 में ज्वाइन किया था वाटर सोर्सेज को। ये पंजाब इरिगेशन के अंडर आता है, तो मैंने 2013 में इसमें से यहाँ से प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले लेते। मैं एक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट था यहाँ पे
0: जी,
1: पंजाब एरिया था हमारे पास। इसमें जैसे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है या और जो वाटर की प्रॉब्लम है उस पर काम करते थे हम लोग, के जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है उस पे काम करते थे हम लोग। तो सफर तो बहुत अच्छा रहा ऑफिस में हमारा।
0: तो किस तरह की आपने रिसर्च की, क्योंकि जो पानी का स्तर है जमीन के नीचे का वो लगातार नीचे जा रहा है।
1: हाँ,
0: तो किस तरह के आपने प्रयास किए ताकि वो एक लेवल मेंटेन रहे, उससे नीचे ना जाए?
1: इसमें हम लोग रेन हार्वेस्टिंग पे भी काम कर रहे थे, बीच में इंजेक्शन वेल्स भी हमने लगाए हैं वाटर लेवल को ऊपर करने के लिए। पर ये सारे ट्रायल्स हुए हैं, बहुत ज्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं हुए हैं अभी तक, पर चल रहा है काम अभी भी
0: जी।
1: अभी लोग कर रहे हैं सभी लोग।
0: तो आलोक जी, क्योंकि आप साइक्लिस्ट हैं, तो साइकिलिंग का शौक कैसे हुआ आपको?
1: पहले यूनिवर्सिटी डेज में करते थे साइकिलिंग, पर बहुत ज्यादा नहीं। जब मुझे एक बार ये हार्ट की प्रॉब्लम आई थी 2020 में, तो उस टाइम एक स्टंट भी डाला था मेरे, उसके बाद मैं साइकिलिंग के बारे में सीरियस हुआ था। तो फिर मैंने साइकिलिंग की प्रैक्टिस शुरू की 2022 में। फर्स्ट टाइम ये मनाली से ले गया था साइकिल करने के लिए, तो उस टाइम मुझे 5 डेज लग गए थे। फिर उसके बाद 2023 में फिर दोबारा गया, उस बार मैंने 4 दिनों में किया मनाली से ले। फिर 2024 में किया ये मनाली से ले, 3 दिन में किया। और इस बार मैंने रिवर्स किया ले से मनाली, ये लेस देन 48 आवर्स में किया मैंने, एग्जैक्टली 47 आवर्स 32 मिनट्स में किया
0: जी। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने 48 घंटे से भी कम समय में लेह से मनाली तक की दूरी तय की साइकिल पर,
1: हाँ जी,
0: ये जो आप बार बार यात्रा कर रहे थे, कभी लेह से मनाली, कभी मनाली से लेह, तो कभी 4 दिन में आप पूरी कर रहे थे, कभी 5 दिन में, और इस बार आपने 48 घंटे से कम समय में पूरी की। तो ये जो यात्रा है, इसका विचार आपके मन में कैसे आया?
1: इसका देख तो रहा था, रिकॉर्ड वगैरह देख रहा था, मैंने देखा था कि 60 प्लस की एज में किसी ने नहीं किया हुआ इतने कम टाइम में। किसी ने भी 5 दिन लिए हैं, किसी ने 6 दिन लिए हैं लेह से मनाली के लिए। तो मैंने कहा, क्योंकि फिटनेस का फ्रीक तो हुई मैं और फिटनेस को भी प्रमोट करता हूँ मैं
0: जी,
1: लाइन भी मेरी अपने फिटनेस की ही है। तो मैंने सोचा कि जैसे जनरली क्या होता है कि जब एक बार स्टंट डल जाए या कुछ हो जाए तो जनरली लोग बैठ जाते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम आ गई या मेरा लाइफस्टाइल खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो वो मैं चाहता था कि लोगों को अवेयरनेस है इस बारे में कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कि आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं और जो आपके गोल्स हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, मन में वो कहते हैं ना कि हिम्मत है मर्दा और मदद है खुदा।
1: हाँ,
0: क्योंकि ये कठिन पहाड़ी सफर था।
1: हाँ,
0: हार्ट ट्रबल भी थी आपको, स्टंट डला हुआ, और वो भी साइकिल पर। कभी बर्फ के पहाड़ होंगे तो कभी ऑक्सीजन की कहीं कमी आई होगी। तो कैसे तैयारी की आपने इस यात्रा की? क्या कोई विशेष आपने ट्रेनिंग की या फिर कोई डाइट फॉलो की?
1: हाँ, ट्रेनिंग तो मैंने काफी टफ ट्रेनिंग फॉलो की। मैंने जो टारगेट मैंने जून का रखा हुआ था, 26 और 27 जून, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इन 2 दिनों के लिए मैंने करनी है साइकिलिंग अपनी। तो मैंने 1 जनवरी से टफ ट्रेनिंग शुरू कर दी थी साइकिलिंग पे। डेली कम से कम 2 से 2.5 घंटे मॉर्निंग में करता था और शाम को 1.5 घंटा लगाता होता था, और संडे के संडे मैं कम से कम 6 से 7 घंटे करता होता था साइकिलिंग
0: जी।
1: और संडे के संडे जैसे पंचकुला रहता हूँ, तो पंचकुला से कभी कसौली चले गए, कभी कंडागाड़ की तरफ चले गए। एक बार मैंने शिमला तक किया, अप डाउन किया एक ही दिन में
0: साइकिल पर,
1: साइकिल पे अप डाउन किया था एक ही दिन में। तो मेन प्रैक्टिस ही थी जिसके कारण मैं

0: कर पाया
1: जी।
0: और डाइट का प्रोटीन इंटेक्स मैंने बढ़ाई हुई थी अपने, जैसे प्रोटीन्स में एग्स वगैरह मैं लेता था मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में एग्स ही लेता था जनरली, तो रोटी वगैरह कम करके एग्स वगैरह प्रोटीन पनीर वगैरह मतलब ये ज्यादा मैंने किया होता इंटेक में
1: जी। आलोक जी, इस यात्रा की बात करते हैं क्योंकि मुझे खुद सुन के बहुत ही एक रोमांच का अनुभव हो रहा है, तो इस यात्रा के दौरान सबसे कठिन पल कौन सा रहा और आपने कैसे उस चुनौती को पार किया?
0: इसमें सबसे जो कठिन है, जैसे ले है, ले की हाइट है 11,000 फीट, ले के बाद आता है तंगलंगला पास आता है, तंगलंगला पास उसकी हाइट है 17,500 के करीब, वो एरिया है और उस एरिया में ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है क्योंकि वेजिटेशन है वहां पे बिल्कुल भी नहीं है, जीरो वेजिटेशन है, उसमें काफी सांस फूल रहे थे तो बार बार मुझे रेस्ट करना पड़ रहा था, रेस्ट करके थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी की इंटेक कर लेनी थी। पानी में भी एक जो बताना चाहता हूँ कि यंगस्टर्स को कि क्या है कि आपके क्रैम्प्स ना पड़े, अगर एक बार क्रैम्प पड़ गए आपके साइकिलिंग करते हुए तो आप दोबारा साइकिलिंग नहीं कर पाते हैं। क्रैम्प के लिए क्या करता था मैं, इलेक्ट्रोलाइट प्लस ग्लूकोज पानी में डाल के आधा लीटर की जो वाटर बॉटल होता है उसमें एक घंटे में मैंने 1 लीटर पीना ही पीना है, चाहे प्यास लगे चाहे ना लगे, ताकि मेरे बॉडी में क्रैम्पिंग ना आए। और साथ में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे मैंने पॉकेट में, थोड़े थोड़े वो ले रहा था साथ में।
1: तो कैसे कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत ही रोमांचक यात्रा होगी ये आपकी।
0: ये मैंने जैसे ले से सुबह 2:30 बजे 2:30 AM पे मैंने साइकिलिंग शुरू कर दी थी ले से फिर जगह आती है उपशी 45 किलोमीटर है, उसके बाद रुमसे आती है, रुमसे के बाद फिर बहुत ज्यादा इंक्लाइन है, ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हाई है, जो रुमसे तक तो फिर भी मैं सुबह 2:30 बजे चल के 8:30 तक पहुंच गया था, पर रुमसे से जो तंगलंगला है वो है 35 किलोमीटर, पर उसके लिए मुझे कम से कम 4.5 घंटे लग गए थे।
1: एकदम खड़ी चढ़ाई
0: और ऑक्सीजन की कमी काफी
1: जी।
0: वो वहां पे मेरी एवरेज स्पीड जो निकल रही थी 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर इस एवरेज में चल रहा था तंगलंगला के बाद तो फिर आपका थोड़ा डाउन आ जाता है, डेबरिंग एक जगह आ जाती है तंगलंगला से अराउंड 22 किलोमीटर है, वहां तक डाउन ही डाउन है। और उसके बाद फिर आपके मोरे प्लेन आते हैं जी, 15,000 की हाइट पे आपका 40 किलोमीटर का प्लेन एरिया, बिल्कुल प्लेन, चाहे आप क्रिकेट मैच करा लीजिए इतना प्लेन एरिया वो
1: जी,
0: एरिया
1: मैदानी इलाका
0: बिल्कुल मैदानी इलाका, 40 किलोमीटर स्ट्रेट रोड है आपके दोनों तरफ, आपके हिल्स काफी दूर दूर है, प्लेन एरिया। पर इस बार क्या हुआ कि वहां पे हवा बहुत अगेंस्ट थी मेरे, मैंने जो सोचा होता कि मैं 2.5 घंटे में 40 किलोमीटर कर लूंगा, मुझे 3.5 घंटे लग गया उसमें
1: जी।
0: तो उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा साइकिल लेके गया हुआ था मैं, बाई चांस रास्ते में मेरी साइकिल भी पंचर हो गई वहां पे मोरे प्लेन्स पे, फिर दूसरी साइकिल पे शिफ्ट होके फिर हम लोग अराउंड 6 PM हम लोग पांग आती है जगह, पांग में पहुंचे थे, फिर वहां नाइट स्टे किया क्योंकि साइकिल मेरी खराब हो गई थी, दूसरी साइकिल जो थी मेरे पास वो उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की मेरी अपनी साइकिल।
1: एक पिक्चर हमारे सामने बन रही है, आप लेह से चले, आप किस तरह से और मनाली तक आपने किस तरह से सफर पूरा किया होगा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी साइकिल पंचर हो गई और दूसरी साइकिल पे आप शिफ्ट हुए, तो जो पहली वाली साइकिल थी उसका क्या किया आपने?
0: पांग में पहुंच के फिर उसका मैंने ट्यूब चेंज की साइकिल के
1: जी,
0: ट्यूब एक्स्ट्रा लेके गया हुआ था मैं, तो वो ट्यूब फिर वहां जाके पांग में मैंने उस ट्यूब चेंज की साइकिल में, फिर मैं पुराने अपने साइकिल पे आया।
1: क्या ये जो यात्रा आपने पूरी की कोई खास साइकिल पे यात्रा पूरी की?
0: हाँ, ये कार्बन फाइबर का था साइकिल है मेरे पास, ये इसका वेट 8 kg है
1: जी,
0: हल्का साइकिल है और गियर सिस्टम शिमानो अच्छे गियर्स वगैरह सारा काफी कुछ अच्छा।
1: नॉर्मल साइकिल थोड़ा भारी होता है,
0: नॉर्मल साइकिल अराउंड 18 kg का होता
1: जी,
0: और ये 8 kg का है, आप डिफरेंस काफी ज्यादा आपस।
1: तो आप बता रहे थे कि वो 40 किलोमीटर का पूरा मैदानी इलाका वहाँ पे आपके ऑपोजिट हवाएं चल रही हैं, तो किस तरह से फिर वहाँ पे आपने साइकिलिंग की, किस तरह से अपने जज्बे को बनाए रखा आपने?
0: बस धुन थी कि हाँ करना ही करना, बस वही दिमाग में था और तो कोई सेकंड थॉट आने ही नहीं दे रहा था मैं दिमाग में कि नहीं करना, करना ही है करना, बस वही था। पहले डिसाइड किया हुआ था कि हमने पांग से आगे रुकना, एक विस्की नाला जगह आती है वहां तक पहुंचेंगे, पर उस टाइम तक हालात तक कोई मतलब बॉडी जवाब दे रही थी एक तरह से, तो शाम को फिर पांग में डिसाइड किया कि वहीं रुक जाएंगे रात को।
1: कहीं जाके आपको ऐसा लगा कि जो आपने टारगेट बना रखा था 48 घंटे में या इससे कम समय में आपने लेह से मनाली की यात्रा साइकिल पे पूरी करनी है, कहीं किसी जगह पे आपको ऐसा लगा कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की आप जिस तरह से बता रहे कमी है वहां पे, तो ऐसा कोई पॉइंट जहां पे आपको लगा हो कि नहीं बस अब छोड़ देना है?
0: नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे साथ मेरे स्पोर्ट टीम टीम थी जो गाड़ी में थे, मेरे साथ मेरे तीन फ्रेंड्स थे, संजय, गौरी और नवीन, तीन तो हमारे क्लास मेरे क्लास फेलोज ही हैं वैसे, वो पर मेरे साथ थे एज ए स्पोर्ट के, अपनी गाड़ी में चल रहे थे वो पीछे पीछे हम लोग।

0: एक जगह आती है जसपा
1: जी,
0: ये मनाली से अराउंड 95 किलोमीटर पहले है। तो वहां पे हम लोग रात को 8 बजे पहुंचे थे, क्योंकि रास्ते में 3 पास आए थे, एक पांग के बाद लाचुंगला आता है पास, और उसके बाद आता है नकीला और फिर बारालाचा पास आता है। ये सारे 16,000 से ऊपर की हाइट के हैं ये सारे पासेस। बारालाचा क्रॉस करने के बाद फिर जसपा आता है, आगे आता है जसपा। जैसे 8 बजे पहुंचे तो अब उस टाइम तक मेरी एवरेज स्पीड आ रही थी रफली 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। उसके बाद वो 95 किलोमीटर रह गया था मनाली, और टाइम मेरे पास थोड़ा रह गया था 6.5 घंटे, मतलब 2:30 बजे से पहले पहले मैंने करना था। तो 13 किलोमीटर के हिसाब से अगर उसी स्पीड पर रहती मेरी स्पीड, तो मैं 95 किलोमीटर नहीं कर पाना था 2:30 बजे तक। तो फ्रेंड्स को लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे था कि मैंने करना ही करना जो मर्जी हो जाए। तो उसके बाद फिर 8 बजे के बाद फिर मैंने नॉन स्टॉप ही किया साइकिलिंग
1: जी।
0: मनाली से अटल टनल क्रॉस करने के बाद बारिश भी शुरू हो गई काफी ज्यादा फास्ट, और खड्डे खुड्डे भी सड़कों पे काफी थे उस टाइम, पर करना था तो करना था।
1: तो और कठिन यात्रा
0: थोड़ा हो गई,
1: शुरू हो गई, लेकिन आपने अपने हौसले को बनाए रखा।
0: हाँ,
1: क्योंकि जिनके पास हौसला होता है मंजिल उन्हीं को मिलती है। तो जब आप मनाली पहुंच गए अपने तय समय में, शायद उससे पहले
0: आधा घंटा पहले
1: जी,
0: हाँ जी,
1: तो मंजिल हासिल करने के बाद उस पल को किस तरह से आपने महसूस किया?
0: उस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लग रहा था मैंने पता नहीं क्या कर लिया। इतनी खुशी हो रही थी, फ्रेंड्स को भी खुश हो रहे थे साथ में कि हाँ भाई एक चीज अचीव, हम जो करना चाहते हैं वो कर लिया हमने।
1: बिल्कुल, और लगभग 62 वर्ष की आयु में आपने ये रिकॉर्ड बनाया, तो आपके परिवार वालों की किस तरह से प्रतिक्रिया रही?
0: हाँ, परिवार का सहयोग था तो ही कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता आदमी, क्योंकि नहीं तो हर संडे को जैसे निकल जाना मैंने साइकिलिंग पे, नहीं तो परिवार वाले तो जाने नहीं देते। उनका सहयोग था तो ही कर पाया था, प्रैक्टिस कर पाया, और उन्हीं के कारण ही हो पाया सारा कुछ।
1: आलोक जी, क्या कभी आपको लगा कि उम्र के इस पड़ाव पर इतनी बड़ी चुनौती लेना रिस्की हो सकता है, खासतौर पर जब आपने बताया कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, स्टंट पड़ा हुआ है?
0: हाँ, तो आप डॉक्टर की राय ले लीजिए, डॉक्टर अगर आपको अलाउ कर देते तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका हार्ट ठीक पंप कर रहा है, आपका प्रॉपर है, सारे आपके पैरामीटर्स ठीक हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्टंट डालने के बाद तो आपका पंपिंग वगैरह अच्छी हो गई, आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है
1: जी। साइकिलिंग को लेकर नई कोई योजना, नया कोई लक्ष्य आपने?
0: मेरा मेन मकसद है लोगों को फिटनेस के बारे में अवेयर करना चाहता हूँ मैं, कि लोग फिटनेस को अपना गोल बनाए। जैसे हम लोग सपोज सुबह किसी दिन टूथब्रश ना करें तो हमें सारा दिन गंदा गंदा लगता रहता है। मैं चाहता हूं कि सभी लोगों में वो आदत आ जाए कि जिस दिन वो एक्सरसाइज ना करे तो उनको वही फीलिंग आए, कि लोगों में इतनी फिटनेस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में अवेयरनेस हो कि वो एक्सरसाइज करें ही करें। जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमने 2050 तक इंडिया को फिट करना चाहते हैं, तो ही होगा कि अगर सभी लोगों को एक्सरसाइज की आदत पड़ जाए।
1: बिल्कुल, और अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो अगर कोई युवा साइकिलिंग को लेकर अपना करियर बनाना चाहता है तो उनको क्या कहना चाहेंगे?
0: वैसे तो लोग प्रोफेशनल साइकिलिस्ट भी हैं, साइकिलिंग करते हैं, या साइकिलिंग एज ए गेम भी है, ओलंपिक्स में भी है अब तो साइकिलिंग, तो वो सब कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन बना सकते हैं
1: जी। आलोक जी, क्योंकि आप ट्रैकिंग भी करते हैं, तो ये जो ट्रैकिंग का शौक है कब शुरू हुआ आपका?
0: वो तो यूनिवर्सिटी डेज से हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने एमएससी जियोलॉजी में की, अर्थ साइंसेज में की है, तो अर्थ साइंसेज में उसी टाइम से यूनिवर्सिटी डेज से हमें ट्रैकिंग का शौक शुरू हो गया था, क्योंकि जियोलॉजी है ही है पहाड़ों के बारे में ही सारी ज्यादा, तो टूर्स भी हमारे लगते होते थे पहाड़ों पे, तो तब से ट्रैकिंग का शौक तो तब से ही शुरू हो गया था
1: जी। तो आज तक कहाँ कहाँ आपने ट्रैकिंग की?
0: मैंने की है इधर शाने ग्लेशियर है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, उधर की है, या फिर इधर श्रीखंड महादेव है, मनीमेश है, वहाँ तो लास्ट 25 ईयर से मैं जा ही रहा हूँ, हर साल जाता ही हूँ वहाँ पे।
1: तो सबसे अच्छा ट्रैकिंग का कहाँ आपको एक्सपीरियंस रहा?
0: ये श्रीखंड महादेव का,
1: थोड़ा बताइए उनके बारे में।
0: ये श्रीखंड महादेव की यात्रा भी होती है, वैसे आप यात्रा से पहले भी जा सकते हैं। तो ये है श्रीखंड महादेव 19,500 की हाइट पे है, अराउंड 32 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत ही सुंदर ट्रैक है।
1: तो कहाँ से ये ट्रैकिंग शुरू होती है?
0: ये शिमला डिस्ट्रिक्ट से, वैसे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, जो जाऊं जगह आती है वहां से स्टार्ट होती है, तो जाते वैसे ये रामपुर बुशहर की तरफ से है, रास्ता इधर से जाता है।
1: तो कितने दिन लगते हैं आपको जाते हुए?
0: कम से कम 3 दिन ऊपर जाने के लिए, 2 दिन वापस आने के लिए, 5 डेज।
1: तो अगर कोई इस तरह से ट्रैकिंग करना चाहता है तो उनको क्या टिप्स देंगे, क्योंकि कठिन रास्ता है हर तरफ?
0: मैं यही कहूंगा कि उनको ना गाइड लेके जाना चाहिए साथ में, अपना कोई भी पोर्टर ले लें या गाइड ले लें, ताकि नया जगह है और बहुत जगह स्लिपरी है, तो वो लोग जो साथ में गाइड या पोर्टर होते हैं वो आपको गाइड करते रहते हैं कि इस तरफ से नहीं, इस साइड से निकल जाइए, इस साइड से निकल जाइए, तो वो जरूरी है। अपने आप अपना जोश में ना रहिए, थोड़ा सा संभाल

0: आलोक जी, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक रोमांच अनुभव हो रहा है। मन करता है कि हम भी साइकिल लेके निकल पड़े।
1: बहुत बढ़िया जी, जरूर करिए आप भी।
0: तो यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत अपने श्रोताओं को और आपको सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
1: किशोर कुमार का ओ मेरे दिल के चैन।
0: जी, बहुत ही अच्छा गाना है। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम सुहानी कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं साइकिलिस्ट श्री आलोक भंडारी। आलोक जी, कभी परिवार वालों ने आपको कुछ कहा हो साइकिलिंग को लेके, क्योंकि हार्ट ट्रबल है आपको, आप लेह से मनाली या मनाली से लेह जाते हैं, किस तरह का सहयोग रहता है परिवार वालों?
1: हम लोग सारे फिटनेस वाले हैं, बेटा भी फिटनेस फ्रीक है, वो भी फिटनेस के लिए काफी अवेयर है, वाइफ है, वाइफ को भी शुरू से पता कि ट्रैकिंग भी करता हूँ, साइकिलिंग भी कर ही रहा हूँ, तो कभी उनके तरफ से ये नहीं हुआ कि ना करो ना करो, ऐसा नहीं हुआ कभी भी।
0: तो चलिए आलोक जी, एक बार फिर से मुड़ते हैं आपकी रोमांचकारी यात्रा की तरफ। आपने बताया था कि आप पांग में रुके और फिर वहां से सुबह निकले, तो इस दौरान आप कहां कहां से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे?
1: जैसे हम लोग फर्स्ट नाइट को पांग में रुके थे, पांग से हम लोग सुबह 5:15 बजे चले थे, तो रास्ते में शुरू में पांग के बाद काफी कच्चा सा बजरी वाला एरिया आ जाता है, उसके बाद आता है एक लाचुंगला आता है जो पांग से अराउंड 22 किलोमीटर के बाद है। लाचुंगला की हाइट भी अराउंड 17,000 फीट है। लाचुंगला के बाद आता है विस्की नाला जो डाउन है, 6 किलोमीटर डाउन है लाचुंगला से। विस्की नाला से फिर अगेन 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है नक्कीला के लिए। नक्कीला के बाद आपके पास आ जाती है गाटा लूप्स, आती है एक जगह गाटा लूप्स में है, 21 लूप्स हैं
0: जी।
1: वो 21 लूप्स हैं, मतलब जिसे हम वैसे पंजाबी में कैंची मोड़ भी कहते थे, वो है 21 लूप्स। वो बहुत बढ़िया जगह है, मतलब बहुत मजा आता है उन लूप्स पे ना आपको साइकिलिंग करके। तो उसके बाद आ जाता है एक सरचू एरिया आ जाता है जी, वो भी

0: बहुत सुंदर एरिया, एक अलग सा एरिया है और सरचू में बॉर्डर है हिमाचल और J&K का
1: जी।
0: सरचू के बाद फिर आपको बारालाचा आता है, एक जगह बारालाचा पास आता है, सरचू प्लेन्स भी है एक तरह से, वहां पे भी इस टाइम इस बार विंड काफी अगेंस्ट थी, उनको कवर करने के लिए काफी टाइम लगा मुझे।
1: जब आप साइकिलिंग करते हैं तो शरीर को लगातार एनर्जी भी चाहिए होती है, तो खाना किस तरह का आप खाते थे वहां पे?
0: रास्ते में मैंने जैसे नॉर्मल फूड लिया, एक बार लंच तो प्रॉपर कर लिया था, लंच जो नॉर्मल लंच होता है वैसे ही किया था, पर जो सेकेंड डे था उस दिन सिर्फ मैं ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस ड्राई फ्रूट्स ही ले रहा था, फिर रोटी वगैरह नहीं ले रहा था
1: जी।
0: सेकेंड डे फिर यानी कि ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही था, क्योंकि थोड़ा सा लाइट रखना चाहता था अपने आप को भी, क्योंकि डिस्टेंस फर्स्ट डे जैसे मैंने किया था 176 किलोमीटर किया थी साइकिलिंग, और उस दिन पहले दिन मैंने अराउंड 16 आवर्स साइकिलिंग की थी, नेक्स्ट डे मैंने किया 251 किलोमीटर
1: जी
0: और 21 आवर्स साइकिलिंग की थी सेकेंड डे में।
1: एक अलग रोमांच का अनुभव हुआ होगा आपको?
0: हाँ जी हाँ जी, वो तो टोटल अलग दुनिया
1: किस तरह की बताइए थोड़ा, हमारे जो सुनने वाले हैं वो उत्सुक होंगे, सोच भी रहे होंगे, क्योंकि एक पिक्चर बन रही है, एक फिल्म की तरह घूम रहा होगा पूरा का पूरा आपका ये यात्रा का जो अनुभव है।
0: मतलब एक जुनून ही था दिमाग में मेरे, और कुछ नहीं था, बस एक टारगेट टारगेट था, और आसपास भी ध्यान इतना नहीं जा रहा था। नो डाउट जगह बहुत सुंदर है, बारालाचा एक ऐसा पास है जहाँ पे जो बर्फ पड़ती है टाइगर स्किन की तरह पड़ती है, मतलब लाइंस लाइंस में होती है वहाँ पे, उसको टाइगर स्किन ही बोलते हैं, टाइगर स्नो पैटर्न को टाइगर स्किन बोलते हैं। तो वो बारालाचा तो एक अलग ही दुनिया है, वो जगह बारालाचा हो गया आपका, तंगलंगला हो गया, ये पासेस जितने भी हैं बहुत सुंदर पासेज है, अलग ही अनुभव है इन चीजों का, वो आप जाएंगे जाके ही अनुभव कर सकते हैं। एक तो डेजर्ट है टोटली, वेजिटेशन है ही नहीं, आप जैसे ही अटल टनल क्रॉस करते हैं, मनाली के बाद अटल टनल क्रॉस करते हैं तो एक अलग ही दुनिया है, मतलब जैसे अटल टनल से पहले बिल्कुल वेजिटेशन है, ग्रीनरी है बहुत ज्यादा
1: जी,
0: और अटल टनल क्रॉस करने के बाद टोटली ड्राई है, टोटली ड्राई है, और साथ में रिवर बह रही है आपके, चंद्रभागा जो है, ये चंद्रभागा जो दो रिवर्स हैं दोनों निकलती हैं अपना बारालाचा पास से
1: जी,
0: एक पहाड़ के एक तरफ है एक दूसरी तरफ है, और ये दोनों कहते हैं कि दोनों बहनें वहां पे बिछड़ गई और टांडी जगह आती है वहां पे ये मिलती है दोनों, चंद्रा और भागा, उसके बाद इसका नाम चिनाव पड़ जाता है।
1: तो आलोक जी यहाँ पर हम आपको एक और गीत सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: ये हो जाए समय है सुहाना
1: जी, बिल्कुल वो सुहाना सफर जो आपका, आपने इतनी अच्छी सीनरी वहां पे देखी होगी पहाड़ी रास्ते में, एक अलग ही रोमांच आपने महसूस किया, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं साइकिलिस्ट श्री आलोक भंडारी। आलोक जी, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि लगभग 62 वर्ष की उम्र है आपकी, तो इस समय बहुत से हमारे श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें आपके हम उम्र भी होंगे, तो एक तो क्योंकि आप फिटनेस प्रेमी भी हैं, तो किस तरह से वो लोग फिट रहें और किस तरह से अपनी ये जो जिंदगी है आगे की वो किस तरह से जिएं?
1: फिटनेस तो आपको एक्सरसाइज डेली करिए, एक्सरसाइज को एक अपनी आदत बना लीजिए। एक्सरसाइज ना करने के तो बहुत बहाने होते हैं कि आज मैं लेट हो गया, आज मैं रात को लेट सोया हूँ, आज मैंने ये करना है, मैं वो करना है, पर एक्सरसाइज की आदत बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज ही है जो आपको फिट रखेगी और एक्सरसाइज ही आपका जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करेगी। आपको एक्सरसाइज की आदत डाली ही डाली है आप अपने आप को।
0: जी आलोक जी, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत से लोग बहाना बनाते हैं,
1: हाँ जी,
0: कई लोग सोचते हैं कि ऑफिस में इतना ज्यादा काम है, मैं बिजी हूँ या टाइम नहीं है मेरे पास।
1: हमारे पास खाने का टाइम है तो फिर एक्सरसाइज का क्यों टाइम नहीं है हमारे पास?
0: जिस तरह से आप भी वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट डायरेक्टोरेट से आप रिटायर्ड हुए हैं, तो उस दौरान आपका दफ्तर और ये फिटनेस किस तरह से तालमेल बिठाते थे आप?
1: उस टाइम मैं जिमिंग करता होता था, जिम का शौकीन था, मैं जिम डेली जाता था, फिर रनिंग भी करता था, मैंने हाफ मैराथन भी 5-6 बार की है।
0: जी,
1: इस तरह से अपने आप को फिट रखता था।
0: आलोक जी, क्योंकि आज बहुत से हमारे सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते उनको साइकिलिंग के बारे में, ट्रैकिंग के बारे में और फिटनेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: बस यही कहूंगा, कुछ भी आप आदत डाल लीजिए, चाहे साइकिलिंग कर लीजिए, चाहे एक्सरसाइज, चाहे जिम जाने लग जाइए, चाहे फिटनेस के लिए करिए, कुछ भी करिए, पर साथ में एक डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो हम कह देते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया है जो है, इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। हमारा जो बॉडी में है 70% हमारी डाइट का रोल है और 30% एक्सरसाइज का रोल है। अगर आप अपना 70% जो पोर्शन है, जो डाइट का पोर्शन है, अगर आपका वो खराब है तो आप एक्सरसाइज जितनी मर्जी करिए आप नहीं कर प्रॉपर आ पाएंगे। डाइट प्लस एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन बनाइए लाइफ में। ये नहीं कह रहा कि आप डाइटिंग करिए या और कुछ करिए, पर डाइट प्रॉपर लेते रहिए।
0: मतलब आजकल में प्रोटीन शेक का बड़ा क्रेज है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: प्रोटीन शेक एक तरह से मिथ है। प्रोटीन शेक्स की जगह हम लोग अगर नेचुरल डाइट पे जाते हैं, जैसे एग्स हो गए या हमारे पनीर हो गई या दालें वगैरह हो गई, ये बेटर है मेरे हिसाब से। पर हर किसी का अपना अपना है, कोई प्रोटीन शेक उनको बॉडी को सूट करता है किसी का। पर आप कहें कि मैं प्रोटीन शेक्स ले लूं और एक्सरसाइज उसके हिसाब से ना करूं कि मेरे मसल्स बन जाएंगे, नहीं बन पाते।
0: जी आलोक जी, आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम शाम सुहानी का आप हिस्सा बने और आपने अपनी साइकिलिंग के और ट्रैकिंग के आपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद, थैंक यू।
0: दोस्तों, आज शाम सुहानी कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे साइकिलिस्ट श्री आलोक भंडारी। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बावर ने। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं मीनाक्षी कालिया। अब आज का शाम सुहानी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को ही कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम

0: समझौते को लेकर वार्ता आज स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में शुरू हो गई है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जे डी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। आज ऑकलैंड में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz से ये आकाशवाणी है, तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: एक जरूरी सूचना सुनो, प्रसार भारती दे अधीन आकाशवाणी चंडीगढ़ विच नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम तहत साल 2026-27 लई अप्रेंटिसशिप ट्रेनी वजों सिख्यार्थियों नूं रखण दा प्रबंध कीता गया है। चाहवान उम्मीदवार जिन्हां कोल इंजीनियरिंग जां संबंधित विषय विच डिग्री होए इस सुनहरी मौके दा लाभ लै सकदे ने। सिख्यार्थियों नूं अप्रेंटिसशिप बोर्ड ऑफ इंडिया नवी दिल्ली दे पोर्टल ते रजिस्ट्रेशन करवाउणा लाजमी है। योग सिख्यार्थियों नूं जुलाई 2026 तों सिखलाई दा मौका दिता जाएगा। वधेरे जानकारी लई आकाशवाणी चंडीगढ़ नाल संपर्क करो। साडा टेलीफोन नंबर है 01722606125। सूचना समाप्त हुई। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
1: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
3: ये आकाशवाणी है।
1: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
3: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
1: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
3: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
1: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
3: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
1: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
3: ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी है।

0: महत्वपूर्ण माध्यम है। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने योग को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की। योग कक्षा 3 से 9वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल से 6 अत्याधुनिक कैंसर जांच एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया और नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन में हरियाणा राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को रिकॉर्ड समय में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन प्रणाली लागू करने के लिए उत्कृष्ट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग न केवल पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है, ये मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए योग को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की।
2: 2026-27 में योग को कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में हमने शामिल किया है और कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 9 तक साथियों सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को लागू किया जाएगा, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। प्रदेश के सभी योग तथा योग शिक्षा को नियमित रूप से प्रोत्साहित करने के लिए सभी PTI DPT और PGT तथा चिन्हित PRT शिक्षकों को योगासन का विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी योग से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।
2: आयोग तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में योग से संबंधित कुछ प्रश्नों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, 16 देशों से आए छात्र छात्राओं, स्वयंसेवी संस्थाओं सहित हर वर्ग के लोगों ने मिलकर योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया और आयुष विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 7 योग संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करनाल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने हजारों लोगों के साथ योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल के कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से 6 अत्याधुनिक कैंसर जांच एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मोबाइल जांच वैन का उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग करना है, ताकि बीमारी का शुरुआती चरण में ही पता लग सके और समय रहते उपचार शुरू किया जा सके। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक द्वारा हरियाणा राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को रिकॉर्ड समय में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित एवं लागू करने के लिए उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। हरियाणा पुलिस की ओर से ये सम्मान इंस्पेक्टर करनैल सिंह ने ग्रहण किया, जो वर्तमान में ब्यूरो के पंचकुला मुख्यालय में कार्यरत हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। योग को जन जन तक पहुंचाने तथा स्वस्थ एवं निरोग समाज के निर्माण के उद्देश्य से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में कार्यक्रम

0: कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जिले भर से हर वर्ग के व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। उन्होंने सभी से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान भी किया।
1: योग दिवस एक दिन संकल्प लेने का हो सकता है, योग घर घर में हो और सब योग को नियमित रूप से अपनाए ताकि एक बड़े लक्ष्य के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आज हम सभी आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र हो। ये तभी संभव है जब हर नागरिक जिम्मेवारी से अपने कर्तव्यों का वहन करे और मैं समझता हूँ कि योग की इसके अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है क्योंकि योग न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा को जोड़ने का माध्यम होता है।
0: अंबाला शहर में आज आयोजित जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम की अगुवाई कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने की। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल हर वर्ग के लोगों के साथ योग कर योग को अपनाने का संदेश दिया। श्री विपुल गोयल ने कहा कि हमारी प्राचीन पद्धति को आज पूरा विश्व अपना रहा है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज पूरा विश्व इस योग दिवस को मनाने का काम कर रहा है और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि की प्राचीन जो हमारी पद्धति थी आज उसे विश्व अपनाने का काम कर रहा है और इसी तरीके से इसी पद्धति को अपनाने के साथ साथ जो मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत, मैं समझता हूँ निरोग लोग और योग करते हुए लोग रहेंगे तो वो जल्दी हम लोग उसे पूरा कर सकेंगे।
0: केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, अधिकारियों व कर्मचारियों और छात्र छात्राओं के साथ प्रोटोकॉल अनुसार योग किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि योग हमारी प्राचीन धरोहर है। यदि हर व्यक्ति योग से जुड़ जाए तो हर घर और परिवार स्वस्थ बनेगा और परिणाम स्वरूप हमारा राष्ट्र भी समृद्ध बनेगा।
3: योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विद्यमान रहता है। इस देश का नागरिक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो देश जल्दी ही दुनिया का विकसित राष्ट्र बनेगा।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम की अगुवाई हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा ने की। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, स्कूली बच्चों और आम नागरिकों के साथ योग किया और कहा कि लोगों के जीवन से दूर हो रही इस प्राचीन पद्धति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है।
4: जो योग लुप्त हो चुका था और पाश्चात्य संस्कृति जिसे अपना रही थी उसी योग को दोबारा से हम लोगों को याद कराने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और आज अगर आप देखते हैं तो पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की ये कहूंगा कि खूबी है कि उन्होंने इस महत्व को समझाने का काम किया और पूरे विश्व ने इसे मानने का भी काम किया।
0: अन्य जिलों से भी योग दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फरीदाबाद में आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर योगाभ्यास किया। जींद में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और युवाओं, स्थानीय नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामूहिक योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। उधर भिवानी में योग दिवस पर आयोजित समारोह में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। आज देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। श्री मोदी ने कहा, योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने योग को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की। योग कक्षा 3 से 9वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल से 6 अत्याधुनिक कैंसर जांच एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: है ना।
1: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
0: पीएलआई है ना।
1: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तों प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग अभ्यास की अगुवाई की। देशवासियों ने योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का सदा दिता। पंजाब भर में भी वख-वख सरकारी ते निजी संगठनों और संस्थाओं वालों योग समागमों का आयोजन। सूबे पद्धरी योग समागम पटियाला। भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान नितिन नवीन अज लुधियाना बीजेपी आगुओं ते वर्करां नाल करेंगे मीटिंग। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मौके पाकिस्तान स्थित इतिहासक गुरु तामा के दर्शनों लिए 290 श्रद्धालुओं का जत्था आज पाकिस्तान में रवाना होया। हाकी च भारत ने ऑकलैंड न्यूजीलैंड 2-0 नाल हरा के अपना दूजा FIH मैला नेशनस कप खिताब जितया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई दी। आज 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस साल का विषय सेहतमंद उम्र लिए योग रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से एक समागम च योग सैशन की अगुवाई की। इस मौके बोलदिया श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों 21 जून साल का सब तो लंबा दिन है ते योग के कारण यह हुण सब तो वड्डा भाईचारक जश्न बन गया।
4: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस प्रोग्राम च मुख्य मेहमान वजो शिरकत की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने कहा कि योग शरीरिक, मानसिक ते अध्यात्मिक सेहत लिए बहुत फायदेमंद है। इस दौरान पंजाब का सूबा पदरी योग समागम पटियाला के थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी विखे करवाया गया। सूबे की सेहत और परिवार भलाई मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने लोगों नाल समूहिक योग अभ्यास किया। इस दौरान राष्ट्र पद्धर के योग खेत्र च शानदार प्राप्तियां करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया और जंगलात विभाग वालों लोगों को बूटे वंडे गए। पंजाब भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वख-वख सरकारी ते निजी संगठनों और संस्थावां ने सवेरे योग सैशन आयोजित किए। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्र प्रधान नितिन नवीन ने जलंधर नेड़े लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विखे योग सैशन च हिस्सा लिया। उन्होंने सूबे के लोगों, खासकर नौजवानों को नशे से दूर रहने का सदा दिया।
5: पंजाब के लोगों को निश्चित रूप से आज उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर वहाँ के युवा साथियों को एमपीयू के अपने सभी संस्था के लोगों के साथ मनाया। मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब अपने भविष्य के लिए, पंजाब जिस प्रकार से अपने संघर्ष, अपने परिश्रम, अपनी मेहनत के लिए जाना जाता है और मैं मानता हूँ कि पंजाब के लोगों ने हमेशा संघर्ष करके अपना मुकाम पाया है, तो निश्चित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ड्रग्स को नो कहेंगे और ड्रग्स की मादक को समाप्त करकर समाज और युवा साथियों के बीच में निश्चित रूप से जो पंजाब, जहां पर विकसित भारत का सपना है, वहीं विकसित पंजाब बने, इस दिशा में हम आगे बढ़े।
3: सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर में अटारी वाघा सांझी चैक पोस्ट, गुरदासपुर में करतारपुर साहब लांगी, फिरोजपुर में सांझी चैक पोस्ट हुसैनवाला और फाजिलका सरहद से सादगी चैक पोस्ट के अलावा सूबे के होरना इकाइयों के हैडक्वार्टर से इस समागम का जश्न मनाया। प्रसिद्ध सांझी चैक पोस्ट अटारी विखे मुख्य मेहमान वजो शामिल हुए बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के इंस्पैक्टर जनरल डॉ. अदुल फुलचेली ने सरहदी पिंड वासियों समेत भागीदारों को योग को अपनी रोजमर्रा में शामिल करने के लिए उत्साहित किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो की सूचना के प्रसारण मंत्रालय दियां होरना पंजाब ते चंडीगढ़ स्थित इकाइयां ने जागरूकता प्रोग्राम आयोजित किए। उधर पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ विखे भी योग दिवस मनाया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ च हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह च करीब 500 भागीदारों ने योगासन किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन

हुणे तुसें सरवन करसी भाई दलबीर सिंह दी आवाज़ च शब्द। आओ हुण अगला शब्द सरवन करदे हां भाई निर्मल सिंह दी आवाज़ विच।

0: ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਮਾਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।
1: से हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत।
2: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया।

0: कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: जय माला।

0: आजादी जरा याद करो कुर्बानी।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। साल के दो चार दिनों में देशभक्ति गीतों को सुनने मात्र को देश प्रेम नहीं कहा जाता। देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो दिल में गहरे बैठती है। देश की माटी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने का जज्बा, हर खतरे को भांपते हुए भी उसकी ओर कदम बढ़ाने का साहस और निडरता हमारे सैनिकों की निशानी है। अपने परिवार को सिर्फ चंद लोगों में सीमित ना करके संपूर्ण देशवासियों को अपना परिवार मानने का हौसला हमारे सैनिक करते हैं। न सिर्फ वो ये मानते हैं बल्कि इस परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दुश्मन की कितनी ही गोलियों का सामना करना पड़े, चाहे तोप के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। हमारे जांबाज सैनिक वो अदम्य साहस दिखा जाते हैं जिन्हें पढ़कर, सुनकर और जानकर हम आश्चर्य, जोश और कृतज्ञता से भर जाते हैं। ऐसी ही अदम्य साहस, जांबाजी और निडरता की कहानी रचने वाले एक वीर सैनिक की शौर्य गाथा आज हम लिए आए हैं। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे।

के बाद जीवन के खूबसूरत दिनों में किशोरावस्था को शामिल किया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति जितना साहसी होता है उतना ही भ्रमित भी। उसे अपने जीवन के प्रति एक अलग उत्साह होता है, साथ ही भविष्य की अनिश्चितताएं भी सामने होती हैं। शायद इसीलिए किशोरावस्था को अल्हड़ता का दूसरा नाम भी कहा जाता है। लेकिन ये स्थिति सभी के साथ नहीं होती। कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो कम उम्र में ही अपना भविष्य तय कर लेते हैं, बना लेते हैं एक ऐसा नाम जो साल दर साल लोगों की जुबान को पवित्र करता है। ऐसा ही व्यक्तित्व रहा सिपाही पांडुरंग सालुंखे का। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव में 1 मई 1950 को बालकृष्ण सालुंखे के घर जन्मे सुपुत्र पांडुरंग सालुंखे। आप मात्र 19 वर्ष की आयु में ही देश प्रेम की राह पर चल निकले और बन गए मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन का हिस्सा और कहलाने लगे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की एक ऐसी पैदल सेना रेजिमेंट है जो हल्के हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरती है। इस सेना के पास भले ही हथियारों के रूप में भार कम हो, लेकिन वो शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि हल्के हथियारों के साथ भारी जोखिम उठाते हुए तीव्र गति से युद्ध मैदान में घुसकर शत्रुओं को परास्त करना इनका गुण है। 1768 में बनी ये रेजिमेंट सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने स्वतंत्रता के पहले और बाद में कई युद्धों में अपना योगदान दिया है और तकरीबन 56 से भी अधिक युद्ध सम्मान इस रेजिमेंट के नाम हैं। अप्रैल 1952 में इसे सेकंड पैरा ट्रूप्स में बदला गया है। पैरा ट्रूप्स ऐसी सेना होती है जिन्हें पैराशूट्स की मदद से युद्ध क्षेत्र में उतारा जाता है, जो सीधे शत्रु सेना से भिड़ने को तैयार रहती है। आपको ये भी बता दें कि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यही युद्ध घोष करते हुए सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने साहस की परिभाषा बदल दी।

1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक लड़ा गया था। इस दौरान हमारे तीनों सेना के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। तकरीबन 4090 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 600 सैनिकों को विभिन्न सैन्य सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र और 513 वीर चक्र शामिल हैं। इन महावीर चक्र विजेताओं में से ही एक हैं हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो शामिल थे उस 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री में, जिसे इस युद्ध में बैटल ऑनर बुर्ज और द थिएटर ऑनर पंजाब का सम्मान भी मिला।

भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। ७१ में पाकिस्तान की ओर से युद्ध का आभास होते ही संभावित हमलों को रोकने के लिए रक्षात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई। इसके तहत 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री को मध के पास साकी नाले पर फतेहपुर लोपोक का भार सौंपा गया। इस इन्फेंट्री में ही शामिल थे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। इस इन्फेंट्री ने छनकला, तुर और भिंडी औलख

0: गांवों में निगरानी रखने के साथ ही वेरा में भी लड़ाकू दस्ता स्थापित कर दिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के इस कदम से फतेहपुर, बुर्ज और घोगा इलाके की सीमा सुरक्षा बल पोस्ट को भी मजबूती मिली। यूं भी मराठा लाइट इन्फेंट्री अकेली नहीं थी, उनके साथ एक फील्ड रेजिमेंट और 66वीं आर्मर्ड रेजिमेंट की विजयंत टैंक स्क्वाड्रन भी थी। वहीं अमृतसर के दिशा में शत्रुओं को रोकने के लिए दूसरी बटालियन तैनात थी और तीसरी बटालियन को गुरदासपुर सेक्टर में मोर्चा दिया गया। इस तरह हम शत्रुओं के लिए पूरी तरह से तैयार थे।
1: बढ़े चलो, सिंह से दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो पहाड़।

0: अनुसार पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ पूरे धुस्सी बंद पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण छनकला से लेकर दक्षिण भिंडी औलख भी शामिल थे। सुरक्षा सीमा बल की फतेहपुर पोस्ट पर भी दुश्मनों का कब्जा था। भारतीय सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है।
1: है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान

0: करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। औरों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की दुंगुहार।

कर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

0: विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा।

पाकिस्तान की ओर से युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अपना प्रयास जारी रखा और एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। दुग और औलख में ईस्ट बंगाल राइफल्स के करीब 150 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी ले आए थे। सेना ने यह तय किया कि पाकिस्तान के कब्जे से धुस्सी बंद को वापस लेना है। किसी भी हार से तुरंत बौखलाकर वार न करना बल्कि कुछ कदम पीछे हटकर एक रणनीति के साथ वापस युद्ध मैदान में जाना एक सार्थक परिणाम भी लाता है। रग रग

15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध के मैदान में डटी थी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर रणबीर सिंह, जो सेकंड इन कमांडर थे और कंपनी कमांडर का दायित्व भी निभा रहे थे। वो अपनी सेना के साथ बुर्ज की ओर आगे बढ़ने लगे। शत्रुओं को इसकी भनक लगते ही 6 दिसंबर को बुर्ज पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दिन के उजाले में ही हमला होने लगा। ऐसे में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी उम्मीद शत्रु सेना को नहीं थी, वो इस हमले से सकते में आ गए। पीछे हटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मेजर रणबीर सिंह ने निर्णय लिया कि अब बुर्ज पर अधिकार करने में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होगा। अगर जरा सी भी देर की गई तो शत्रु एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। एक ओर जहां शत्रु सेना एक छोटी सी जीत के जश्न में ही डूब गई थी, वहीं हमारी सेना के निर्णय से आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रुओं को खदेड़ना हो तो एक छोटी जीत को अपने दूसरे प्रयास से बड़ी जीत में बदलने के बाद भी जश्न मनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना को बुर्ज में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सिपाही पांडु

तीन सालों के अपनी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथियों के साथ अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर रणबीर सिंह के हाथ में था। मेजर रणबीर सिंह ने ये तय किया कि अब दुश्मन सेना को ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अपनी अन्य साथी सेनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो दुश्मन के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करे। बिना देर करते हुए एक योजनाबद्ध हमला करने का फैसला किया गया, जहां दुश्मन को दोनों ओर से घेरने की योजना बनाते हुए टैंक टुकड़ी को पीछे से और बाकी आगे से हमला करने निकल चले। इससे शत्रु के आगे बढ़ने का रास्ता तो बंद होता ही था, साथ ही वो पीछे हटने लायक भी नहीं रह पाता। शत्रु की कल्पना से परे एक ऐसा रास्ता निकालना जो उसके होश उड़ा दे, एक बेहतरीन नेतृत्व का उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरणों की भरमार है हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा।

बेहतरीन नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणबीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट्स के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट्स भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्यौछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री हैं, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो अपने साथियों के साथ मेजर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थे शत्रुओं पर हमला बोलने के लिए। 6 दिसंबर को बुर्ज पर हमला शुरू हुआ। बंकरों में छुपी शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन लिए और उन्हें हराया। ये एक बेहद क्रूर और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। ऐसी बौखलाहट में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जाती है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे भी यहाँ शत्रुओं से दो दो हाथ कर रहे थे। तभी उनकी नजर शत्रुओं के एक ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु ने एक रॉकेट लॉन्चर पैदल सेना के साथ आ रहे भारतीय टैंकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालुंखे शत्रु सेना से बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय टैंक की ओर मोड़ दिया। एक पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया। लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखे पर स्टेन गन से धुआंधार वार किया। गोलियों की इस बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखे वहीं शहीद हो गए।

लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका।

सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने जब बलिदान दिया तब वो मात्र 22 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सालुंखे को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हम इस जांबाज सिपाही को नमन करते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर निहर शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ अज देश भर विच 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि योगा पूरी दुनिया नूं जोड़न दा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पंचकूला विच आयोजित एक राज पद्धरी समागम विच मुख्यमंत्री नायब सिंह ने योग नूं उत्साहित करन लई कई ऐलान किए। योग दा विशा तीजी तों नौवीं जमात दे पाठक्रम विच शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोरनी विच एक राज पद्धरी कुदरती इलाज अते योगा संस्थान दी स्थापना दा ऐलान किया है। भविख विच हरियाणा विच HSSC अते HPSC प्रीख्यावां विच योग नाल संबंधित प्रश्न पुछे जाणगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अज करनाल दे कल्पना चावला मैडिकल कॉलेज तों 6 अति आधुनिक कैंसर स्क्रीनिंग एम्बूलेंसा नूं हरी झंडी दिखाई। नवीं दिल्ली विच आयोजित 26वें ऑल इंडिया फिंगर

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे आधार जैसा ना कोई,
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर च तुसी सुनोगे अगला प्रोग्राम हवा महल। प्रोग्राम असी विविध भारती दे मुंबई केंद्र तो रिले करांगे।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं झलकी मोटी मछली। लेखक हैं वी एम आनंद और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
1: मिस्टर भैरवी लाल, मिस्टर बी लाल।
2: यस सर।
1: जब से हमने ये वन टू ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, यहाँ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियाँ ही मक्खियाँ, मक्खियाँ ही मक्खियाँ।
2: मक्खियाँ, मक्खियाँ। सर मैं आपको मतलब नहीं समझा।
1: मतलब तुम उस दिन समझोगे भैरवी लाल, जब इस स्टोर में ताले लग जाएंगे।
2: ऐसा ना करिएगा सर, ऐसा ना करिएगा।
1: बजाय इसके कि तुम लोग किसी कस्टमर से बात करो, किसी मोटे ग्राहक को भांसो, सारे दिन मक्खियां मारते रहते हो।

0: चाहते नहीं सर, यहाँ पर कोई खास कस्टमर तो आता नहीं।
1: कस्टमर आता नहीं? अरे जब आता है तब तुम कौन सी तोप मार लेते हो, कस्टमर खाली हाथ चला जाता है, और खरीदता भी है तो 10-5 रुपए का, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्यूमिस पाउडर वाला?
2: यस बॉस।
1: तुम सारा दिन अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक किया करती हो, कभी किसी कस्टमर को अटेंड करती हो?
2: पन तो अपना सब कस्टमर अटेंड करता है सर, पर इधर कौन सा बड़ा कस्टमर आने ही मांगता है।
1: मेस पाउडर वाला कस्टमर वही बड़ा होता है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, समझी तुम?
0: सर जब से आपने हमें ये सिखाया है कि हर ग्राहक को अपना बाप समझो, तब से मैं हर ग्राहक को अपना बाप समझ रहा हूँ।
2: Yes sir, I also treat my every customer like my daddy.
1: लेकिन जिस डैडी की जेब न साफ की जाए वो डैडी कैसा? मेरा मतलब है अब से तुम हर ग्राहक को मछली समझो।
0: मछली?
2: You mean a fish?
1: Yes, हर ग्राहक को मछली समझो।
0: अच्छा।
1: और अपने आप को बगुला, जो ही मछली स्टोर में घुसे उस पर
0: झपट पड़ो।
1: राइट,
3: हम तो कहीं तक कसके पे पहुंच ले जान लो पावर।
0: चुप सर, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया।
1: देखो कस्टमर के सामने अपने माल की तारीफों के पुल बांधो, और कस्टमर को किसी चीज की प्राइस डिस्कस करने का मौका मत दो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि उसको बोलने का मौका मत दो, उसको इंटरटेन करो, और फिर देखो कस्टमर कितना बड़ा ऑर्डर देता है तुमको।
2: रियली सर, इट इज अ वंडरफुल आइडिया, अब तो कोई भी कस्टमर इधर से बच के जाएगा ही नहीं सर।
3: जाए कैसे मैं साहब?
0: चुप करो सर।
1: यस यस,
0: रियली यू आर अ ब्रेन।
2: रियली सर, यू आर अ जीनियस।
1: कस्टमर, क्वाइट क्वाइट क्वाइट।
2: ओह
1: कस्टमर आया है।
4: कस्टमर ना कहिए सर।
5: वंडरफुल, आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से लेकर कार तक अच्छी मिलती है।
1: देखो भाई, आज इस ग्राहक से बड़ा ऑर्डर लेना है, आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाइए जाइए जाइए। आइए सर, आइए आइए आइए। खुशामदेद, वेलकम, स्वागतम। वन टू ऑल स्टोर हमने आपके लिए ही खोला है सर, यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिलती है।
5: वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा पूछिए तो मुझे ऐसी ही दुकान की यानी ऐसे स्टोर की तलाश थी।
4: हाँ,
5: मुझे काफी चैन मिला। हाँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
1: सर आप फिक्र न करें, जो चीज आपको शहर में किसी दुकान पर नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी, यानी कि सुई से लेके कार तक सर। और सर आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, आप यहां से बचकर नहीं जा सकते। सुनो सुनो, मछली फंस गई,
2: मोटी मछली।
1: जी जी जी जी जी, मेरा मतलब है मोटी मछली, मोटी मछली। वो आप देखना है सर, वो हमारे खिलौनों का डिपार्टमेंट, टॉयज डिपार्टमेंट।
5: योर मेन टॉयज डिपार्टमेंट?
1: जी हाँ सर, वहां पर हर तरह के खिलौने मौजूद है सर, और वहां पर एक मोटी मछली भी है।
5: Oh, I see. You mean fat fish.
1: जी हाँ सर, फैट फिश। आइए ना, आपको हर डिपार्टमेंट की सैर कराई जाए। चलिए सबसे पहले हम वहीं चलते हैं, मिस पाउडर वाला।
2: Yes,
1: सबसे पहले हम वहीं चलते हैं।
2: Sure.
1: ये देखिए सर, ये है हमारा टॉयज डिपार्टमेंट। ये देखिए सर, ये भालू, भालू देखिए, भालू कितना सुंदर है। और ये कुत्ता देखिए सर, और ये सर कबूतर, और ये सर ये देखिए मोटी मछली है।
5: मोटी मछली? ओ आई सी, इट्स अ रियली लवली फैट फिश।
1: सर ये मछली कितनी हैंडसम है, कितनी इनोसेंट है, बिल्कुल
5: आप की तरह।
1: सर ये देखिए,
5: आई लाइक इट वेरी वेरी मच।
1: ओ थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी चॉइस बेमिसाल है सर। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आपके छोटे बच्चे की एज क्या है?
5: मेरा छोटा बच्चा?
2: Yes.
5: Oh, he is only 5 months old.
2: Oh, good.
1: Very good sir, very good. तो फिर आप ये बच्चा गाड़ी जरूर पसंद करेंगे। सर हमारे पास बच्चा गाड़ी का नया स्टॉक आया है, ये देखिए लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट डिजाइन। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि इन बच्चा गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है?
5: अगर मुझसे पूछा जाए तो ये गाड़ी सबसे बढ़िया है।
1: ओह वंडरफुल सर, वंडरफुल।

0: ये चॉइस इज वंडरफुल सर, ये बच्चे का भी ऑटोमेटिक है।
1: ऑटोमेटिक?
0: जी हाँ, यो समझिए कि जब आप और मेम साहब शाम को घूमने निकलेंगे तो साथ साथ ये बच्चा गाड़ी आप ही आप चलती जाएगी सर।
1: वंडरफुल, वंडरफुल, यानी कि अपने आप चलती जाएगी।
0: हाँ सर, देखिए वो बात क्यों है कि कभी आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे तो मेम साहब साथ चलेंगी, कभी मेम साहब साथ चलेंगी तो आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे, बस इस तरह से गाड़ी अपने आप चलती जाएगी सर। और ये देखिए सर, इस बच्चा गाड़ी में एक निपुल लटका हुआ है, जब भी बच्चा रोने लगे आप ये निपुल चूस सकते हैं। मेरा मतलब है सर, ये बच्चे को निपुल चूसा सकते हैं सर।
1: वेरी गुड,
0: आइए साहब इस तरफ आइए। जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए सर, ये हमारा कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है सर, और इनसे मिलिए सर, ये हमारे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज है मिस पाउडर वाला।
2: गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
0: पाउडर वाला बी टैक्टफुल, ये बहुत बड़ा कस्टमर है। मोटी मछली,
1: मछली।
2: ओके बॉस। सर आप सर हाथ आके देंगे?
1: यू मीन मैं अपना हाथ पाऊं?
2: यस सर, ये सेंट लगा रही हूँ आपके हाथ में, जरा सुनकर देखिए कैसा खुशबू है।
1: बहुत बढ़िया खुशबू है इसका।
2: सर ये सेंट काटा माटा जैस्मीन सेंट का है।
1: काटा माटा जैस्मीन?
2: यस, काटा माटा जैस्मीन सेंट का खुशबू है। सर जो भी कोई इस सेंट को लगाकर बाजार में जाएगा ना, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगा। और सर ये देखिए, रॉक एंड रोल फॉक्स ट्रॉट पाउडर। सर ये पाउडर कोई ऑर्डिनरी पाउडर नहीं है, इस पाउडर को लगाकर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर। फिल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन, सब लगाता है सर, वन टू ऑल सब लगाता है, पता सर? नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, ये पाउडर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर, यहाँ तक कि रेडियो का डायरेक्टर भी इस्तेमाल करता है सर। फिर आप क्यों नहीं यूज करेगा? करेगा ना। और सर ये देखिए, ओटो कमन शैम्पू, इस शैम्पू से आपका सर का बाल एकदम मुलायम हो जाएगा सर।
1: लेकिन ये शैम्पू,
2: समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, आप ये शैम्पू लेकर क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, ये शैम्पू आपके लिए नहीं है, आपका मेम साहब के लिए है। आई नो सर, आप तो सिर का गंजा है।
0: ओ मिस पाउडर वाला,
1: बच्चे चुप रहे,
0: तुम साहब को गंजा कहती हो? डोंट यू नो ए कस्टमर इज नेवर गंजा।
2: आई एम सॉरी सर।
0: इट्स ऑल राइट सर, आई एम वेरी सॉरी सर, वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने आपको गंजा कहा सर।
1: डजंट मैटर, डजंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
0: बात क्यों नहीं सर, बात क्यों नहीं है, अगर देखा जाए सर तो आप गंजे नहीं है सर, मेरा मतलब आप गंजे लगते जरूर है मगर आप गंजे है या नहीं, लेकिन फिर भी आपके सर पे बाल है, मतलब बाल नहीं है लेकिन फिर भी बाल है, लेकिन नहीं है लेकिन है, मेरा मतलब आपके सर पर थोड़े थोड़े बाल है।
1: Oh yes,
0: सर आई थिंक नाउ यू नीड दिस शैम्पू।
1: Why not? Why not?
0: और सर इनसे मिलिए, ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है मिस्टर भैरवी लाल, यानी कि मिस्टर बी लाल।
3: गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर बिकता है। हुजूर आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं? मेरा मतलब है बेंजो, गिटार, सारंगी, तानपुरा, तबला, ढोलक।
4: मुझे आई मीन हर साज बजाने का शौक है, इट्स माय हॉबी।
1: वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो तो हुजूर के चेहरे से नजर आ रहा है कि हुजूर को हर साज बजाने का शौक है। और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा।
4: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
1: तो सर आप ताल, कहरवा, भैरवी, पाड़ी ख्याल, मैदानी ख्याल, तीन ताल, चार ताल, नैनीताल, मल्ली ताल पसंद करेंगे, या दादरा तुमरी गजल के रिकॉर्ड पसंद करेंगे, या फिर आप फिल्मी गाने
4: झुमका गिरा रे

0: जैसा कि कल जो मेरा चौपाटी पर
1: आग मटका हो गवा
2: अखिया मिला के जिया भर मा के चले नहीं जाना चले नहीं जाना
3: तो चुप रहिए मुझे आई मीन सिर्फ कथकली के रिकॉर्ड पसंद है
0: कथकली लेकिन सर कथकली तो नाच का नाम है किसी गवैये का नाम तो नहीं सर
4: पैर भी लाल डोंट यू नो ए कस्टमर इज ऑलवेज राइट कस्टमर जो कहता है ठीक कहता है
0: नो सर आई मीन यस सर आप ठीक कहते हैं कथकली हमारे देश की एक मशहूर गायिका है
3: ऑफ कोर्स नाउ यू अंडरस्टैंड
0: कथकली ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है उसके गले में क्या दर्द है मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है आवाज में क्या दर्द है दर्द में क्या कसक है कसक में क्या जादू है कथकली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू मेरा मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता है
4: मिस्टर भैरवी लाल साहब हमारे स्टोर में पहली बार तशरीफ लाए हैं इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ आप तशरीफ रखिए सर मैं भी मंगवाता हूँ
0: कोल्ड ड्रिंक
4: सुनो
1: इनके लिए मैंगो जूस
4: लाओ
0: मैंगो जूस जाओ जल्दी
4: सर
1: सर
4: आप मैंगो जूस पीजिए सर
3: मैंगो जूस
4: आप तो शर्मिंदा करते हैं सर आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को एंटरटेन करना हमारी ड्यूटी है सर आप ये सेब खाइए सर सेब आप ये नाशपाती खाइए
3: भाई अब मजबूर काट तो खाना ही पड़ेगा
4: इट्स अ प्लेजर सर देखा भैरवी लाल कितना बड़ा ग्राहक फंसा है आज
0: ग्राहक ना कहिए सर मोटी मछली
4: भैरवी लाल आज उस ग्राहक से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है
0: ये सब आपके टैग का नतीजा है सर
4: सर तो फिर आप अपना ऑर्डर नोट करा दीजिए
2: ये सर
3: बात ये है कि मैंने अभी तो आपका सारा स्टोर देखा था आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से कार तक
4: यस यू आर राइट सुई से कार तक
3: हाँ तो आपका वो सुइयों का डिपार्टमेंट किधर है
2: व्हाट
4: सुइयों का डिपार्टमेंट सर वो तो हमने यही लिख रखा था सुइयां हमारे पास नहीं है सर आप तो मजाक कर रहे हैं
3: लेकिन मुझे तो सिर्फ एक पैकेट सुइयों का चाहिए
4: पैकेट सुइयों का चाहिए सुइयों का पैकेट
3: आपने बेकार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया अच्छा मैं चला
2: अरे नहीं भाई सुनो
0: अरे रुकिए
2: चले गए
0: मोटी मछली
5: मोटी मछली वीएम आनंद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे हवा महल कार्यक्रम में इसके निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की भेंट

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर दरबेन से, आवाजें खान साहब और शाहसत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फतेह अली खान के और संगीत शाहसत सचदेव और नुसरत फतेह अली खान का।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म सितारे जमीन पर से। आवाजें अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लोय का।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म धड़क 2 से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत श्रेयस पुराणिक का।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: 1978 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रेय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन

0: नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ

0: समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेल्वे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जीडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में

0: अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में सरती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनाऊं
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी तोड़ ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: 1978 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म रॉकस्टार से। आवाजें हर्षदीप कौर और साथियों की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म शहजादा से, आवाजें अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की थी। गीत के बोल आरपी सिंह और श्लोक लाल के, संगीत प्रीतम का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा ना पहुँचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपरहिट थे और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे।

तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने

0: फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहां रहा मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पुणे से बॉम्बे आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपए थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में, और संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।

0: grateful to His Majesty for granting us this interview.
1: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं.
0: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
1: हम फौजियों की उनकी कदर करते हैं.
0: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
1: हम समझते हैं अली जाह अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है.
0: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
1: हमारी दरख्वास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबदार हो जाएं.
0: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
1: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी.
0: After which the company will assume the administration of Oud.
1: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी.
0: I hope the king has understood what I've said.
1: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे.
0: What is this? You please tell His Majesty that I have no use for that.
1: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है.
2: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते.
3: और अब जहां तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के यूपी के है. जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में. हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई. मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ. बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में. तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का. हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी. तो मैं जब पूना आया था 1972 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूं. मेरे एक दोस्त वहां बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक. फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई. बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले. तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा. और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से. लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू.
4: अच्छा.
3: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहां मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई. शकील बदाउनी का एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूं मैं हूं मोहब्बतों का राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं. यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता. शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता.
5: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं.
3: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, जिस उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था. वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो. तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है. वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है. और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म. तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी.
5: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था.

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथ में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस में टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साये के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: अब और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइफ को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
5: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
4: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहां। मिस्टर धनराज, अब इतने खामोश क्यों हो गए?
6: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
7: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
8: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत हो।
2: और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाजा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी को हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही जिद, उसको बरकरार

घंटों तक या मिनट, मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूँ तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाजें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिक की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे। अब मैंने उनकी आवाज पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूं। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

0: अच्छा या गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं वही काम करते हैं पुराने गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संगदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
1: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
0: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
2: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
0: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माय लव, संगीतकार दान सिंह।
1: हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम।
0: फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
2: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो इस वेले तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम सुरसांझ। तुम सुन वा रहे अगला गाना बिलाल सईद दी आवाज विच।
7: Hey yo, got a brand new Envy crew. The Galaxy.

0: ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾਨ ਜਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਦੋਸਤ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ। FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की

0: धनराशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜ ਕੇ ਪਚਵੰ